ये एक टर्म प्लान का ऐड है, पर इसे स्किप मत करना क्योंकि अगले 30 सेकंड्स में तुम अपनी फैमिली को 2 करोड़ की फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकते हो, वो भी 30 रुपीज से भी कम में, क्योंकि

0: शिवा टेक शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। तत्र च स्वसंबोधनं प्रदास्यति। सायंकाले असौ एकस्मिन् सामुदायिक कार्यक्रमे भारतीय प्रवासिभिः सह संवादं विधास्यति। G7 देशैः वैश्विक स्थिरतायाः सुरक्षा सहयोगस्य अथ सीमापार संघटित अपराध निवारणस्य उद्देश्येन विभिन्नाः प्रमुखाः घोषणाः विहिताः। मुख्य वक्तव्ये नेतृभिः अमेरिका ईरान देशयोर्मध्ये संजातं संधि निश्चयम् अभिनन्दितम्। अन्य घोषणापत्रे G7 देशैः मादक द्रव्यस्य अवैध कार्यं निरोद्धुं संकल्पो विहितः। अस्मिन् अभियाने ब्राजील दक्षिण कोरिया देशौ अपि सहमतिं प्रदर्शितवन्तौ। फ्रांस देशस्य एवियन नगरे चलायमाने G7 शिखर सम्मेलने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सर्वहितकारी सतत आर्थिक विकासः इत्याख्ये मुख्य विषये आयोजितायां महत्वपूर्ण कार्यगोष्ठ्यां भागं भजते। सत्रेऽस्मिन् G7 देशाः सहभागी राष्ट्राणि अन्ताराष्ट्रिय मुद्रा कोषस्य OECD इत्यस्य च प्रतिनिधयः उपस्थिताः सन्ति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्यारभ्य मध्यप्रदेशस्य ओडिसायाः च पञ्चदिवसीयायां यात्रायाम् अस्ति। प्रथमदिवसे सा मध्यप्रदेशस्य बैतूल नगरे आध्यात्मिक जागृत्या जनजातीय समाजस्य सशक्तिकरण कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति। द्वितीय दिवसे सा ओडिसायाः रायरंगपुरे चिकित्सा शिविरस्य ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनायाः च उद्घाटनं विधास्यति। तृतीय दिवसे राष्ट्रपतिः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह पहाड़पुरे कौशल केन्द्रस्य निरीक्षणं करिष्यति। सहैव रायरंगपुरे जनसभां च संबोधयिष्यति। चतुर्थ दिवसे सा जून मासस्य 21 दिनांके जबलपुरे अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसोत्सवे भागं ग्रहीष्यति। सहैव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालयस्य दीक्षांत समारोहे अध्यक्षतां विधास्यति। यात्रायाः चरमे सोपाने सा ख्यूनो राष्ट्रिय उद्याने सहरिया जनजातीय सदस्यैः चीता अन्वेषकैः च सह संवादं विधास्यति। संयुक्त राष्ट्र संघस्य खाद्य संस्थाभ्यां खाद्य एवं कृषि संघटनेन अथ विश्व खाद्य कार्यक्रमेण च विज्ञापितं यत् आगामिषु मासेषु युद्ध जलवायु परिवर्तन धन न्यूनता कारणात् विश्वस्य 13 प्रमुख क्षेत्रेषु बुभुक्षा संकटं अधिकं गभीरं भविष्यति। संयुक्त प्रतिवेदनस्यानुसारं सम्प्रति जगति 66.2 कोटि जनाः तीव्र खाद्यासुरक्षया पीडिताः सन्ति। अस्यां सूच्यां सुडान, दक्षिण सुडान, यमन, फिलिस्तीन, नाइजीरिया, सोमालिया चेत्यादयः देशाः अत्यधिक संकटग्रस्ताः सन्ति। प्रतिवेदने चिन्ता प्रदर्शिता यत् 20-22 परं मानवीय सहायतायै प्राप्यमाणं धनं 60% न्यूनं जातम्। WFF संस्थायाः कार्यवाहक निदेशकः कार्ल स्काउ महोदयः अवोचत् यत् यदि शीघ्रं किमपि कार्यान्वयनं न क्रियते तर्हि कोटिशः जनाः दुर्भिक्षस्य गर्ते पतिष्यन्ति। हॉकी क्रीडायां नीदरलैंड देशस्य राइडरहेम नगरे प्रचल्यमाणायाः FIH प्रो लीग स्पर्धा मालिकायाः द्वन्द्वे भारतीय पुरुष हॉकी दलेन जर्मनी दलं 3-1 इत्यांकान्तरालेन पराजितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा।

0: गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
1: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एआई की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियू में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। इसमें ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने, डीप फेक और बच्चों के शोषण जैसी चुनौतियों से निपटने पर जोर दिया गया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिसिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्रो लीग हॉकी मैच में भारतीय पुरुष टीम ने मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से मनदीप सिंह, शिलानंद लाकड़ा और नीलकांत शर्मा ने गोल किए। ये मनप्रीत सिंह का 413वां अंतर्राष्ट्रीय मैच था। उन्होंने भारत के लिए सबसे अधिक मैच खेलने का कीर्तिमान बनाया। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया है। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले योग संगम कार्यक्रम के लिए देशभर में 1,70,000 से अधिक आयोजकों ने पंजीकरण कराया है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि योग संगम स्वास्थ्य के माध्यम से एकता का उत्सव है। इसके तहत देशभर में हजारों स्थानों पर लोग एक साथ योग करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य योग को जन जन तक पहुंचाना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अघि बढ़ाउन चाहन्छौ। र आज चाहिँ कुरा गर्न मन परेको छ, हाम्रो देश प्राय 200 वर्षसम्म है ब्रिटिसहरूको अधीनमा रहेको थियो र त्यति वर्षसम्म विभिन्न संघर्षहरू गर्नु पर्यो कि ब्रिटिसहरूको हातबाट आफ्नो देशलाई छुटाउनको लागि है। र त्यस आन्दोलनमा असंख्य हाम्रा वीर वीरांगनाहरूले आफ्नो प्राणको आहुति दिए र तीमध्ये आज एकजनाको कुरा गर्न मन परेको छ, किनभने उहाँको निधन आजकै दिन 1858 भएको थियो। ग्वालियरमा ब्रिटिस सेनाहरूसित युद्ध गर्दा गर्दै उहाँ शहीद हुनुभएको थियो। उहाँ हुन् रानी
1: लक्ष्मीबाई।
0: हजुर, उहाँबारे छोटो जानकारी राख्दै हामी कार्यक्रमलाई अघि बढाउन चाहन्छौ।
2: भारतीय ललनाओको गौरवान्वित गर्ने वाली अमर वीरांगना रानी लक्ष्मीबाईका जन्म 19 नवम्बर 1835 वाराणसी में हुआ था। माता भागीरथी बाई और पिता मोरोपंत तांबे ने अपनी बेटी का नाम रखा मणिकर्णिका और प्यार से मनु बुलाने लगे।
3: सन 1842 में झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ विवाह के बाद कन्या मनु झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो गईं। 1851 में उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन ये आनंद अधिक समय न चला और 1853 में उनके पुत्र और पति दोनों का देहावसान हो गया। उस समय भारत के बड़े भूभाग पर अंग्रेजों का शासन था, वो झांसी को अपने अधीन करना चाहते थे। इधर रानी लक्ष्मीबाई ने 5 वर्ष के एक बालक को गोद लेकर राजकाज संभाला, तो उधर उन्हें एक लाचार स्त्री मानकर अंग्रेजों ने अवसर का लाभ उठाने की मंशा से रानी के दत्तक पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया।
2: 1858 में ब्रितानी सेना झांसी की ओर बढ़ने लगी।
3: दयालु स्वभाव की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों का ये फरमान सुनकर भड़क गईं और उन्होंने घोषणा की,
2: मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी।
3: अंग्रेजों ने झांसी पर हमला बोल दिया और रानी ने भी युद्ध की तैयारियां पूरी कर रखी थी। रानी के युद्ध कौशल को देखकर अंग्रेज सेनापति सर ह्यूरोज भी हैरान रह गया। जब उसे लगा कि सैन्य बल से किला जीतना संभव न होगा, तब उसने एक कुटिल चाल चली।
2: रानी के एक सरदार दुल्हा सिंह ने उनसे विश्वासघात कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई भागकर कालपी पहुंच चुकी थी। घोड़े पर सवार, दाहिने हाथ में नंगी तलवार लिए, पीठ पर अपने पुत्र को बांधे हुए रणचंडी बनी रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों ने घेर लिया। पहले उनके पैर में गोली मारी और फिर संगीन से उन पर वार किया। अपने मुखमंडल पर दिव्य कांति लिए 17 जून 1858 को क्रांति की ये ज्योति अमर हो गई। सुभद्रा कुमारी चौहान ने रानी लक्ष्मीबाई के लिए लिखा,
3: सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
0: आज श्रोता, आज रानी लक्ष्मीबाईको पुण्यतिथि, उनीबारे छोटो यो जानकारी पछि श्रोता अब कुरा गरौं इतिहासको र सर्वप्रथम भारतको प्रसंगमा कुरा गरौं। 1658 आजको दिन औरंगजेबले आगरा किल्ला आफ्नो अधीनमा लिएको थियो।
1: हजुर, 1576 महाराणा प्रताप र अकबरको बीच हल्दीघाटीको युद्ध शुरू भएको थियो। यो युद्ध महाभारतको युद्ध सरह विनाशकारी सिद्ध भएको थियो भनेर मानिन्छ।
0: हजुर, 1940 आजको दिन नेताजी सुभाष चन्द्र बोसले फरवर्ड ब्लकको स्थापना गर्नुभएको थियो। 1946 आजको दिन गोवा मुक्ति आन्दोलन शुरू भएको थियो र सत्याग्रह आन्दोलनबाट शुरू भएको गोवाको मुक्ति आन्दोलनले साँच्चै पोर्तुगिजहरूको औपनिवेशिक शासनबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको थियो र डाक्टर राम मनोहर लोहियाले डाइरेक्ट एक्सन डेको रूपमा पालन गर्ने आह्वान गरेका थिए र आजको दिनलाई गोवा क्रान्ति दिवसको रूपमा पालन गरिन्छ। 1956 आजको दिन भारतको सदनले द हिन्दू सक्सेसन एक्ट पारित गरेको थियो।
1: हजुर, 2008 केन्द्र सरकारले गुर्जरहरूको ओबीसी कोटामा 5% आरक्षण दिने घोषणा गरेको थियो।
0: हजुर, 1978 आजको दिन काराकोरम हाइवे खोलिएको थियो र भनिन्छ यो नै विश्वको सबैभन्दा अग्लो मानिसहरू हिँड्ने अन्तर्राष्ट्रिय मार्ग हो जसले चीन अनि पाकिस्तानलाई पनि जोड्दछ र 1300 किलोमिटर लामो यो हाइवे काराकोरम हिमालय क्षेत्रबाट पार भएर गएको छ। भारतकै प्रसंगमा कुरा गर्दा 1991 आजकै दिन लोकसभा चुनावमा पूर्ण बहुमत नल्याए पनि कंग्रेस पार्टी सबैभन्दा वृहत पार्टी देखा परेको थियो।
1: 2008 कुरा गर्दा भारत यात्रामा आएका सिरियाको राष्ट्रपति बशत अल असद र प्रधानमन्त्री डाक्टर मनमोहन सिंह बीच 3 सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।
0: 1997 आजको दिन प्रकाश पादुकोणले आईबीसी अर्थात इण्डियन ब्याडमिण्टन कन्फेडरेशनको लन्च गरेको थियो।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत तांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवेटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
3: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
4: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
2: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
5: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनीतिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
2: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
6: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
2: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
7: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सीकल सेल अनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और 22 जून को दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्रपति के बैतूल दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाने ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें आज ड्रोन के उड़ान संचालन पर रोक रहेगी और भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
2: झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
8: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
9: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
10: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
8: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
11: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
8: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
12: We have a huge pool of talent.
13: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमरीका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
14: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमरीका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट ए एफ थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने

0: लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने तीन मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। 16 माह बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में अमरीकी राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन। फिर टूटी उद्धव की शिवसेना, 9 में से 6 सांसद बागी, शिंदे को माना अपना नेता। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है, लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपकर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा अंकेक्षण, पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिए निर्देश, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी के इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, हैट्रिक 1, रिकॉर्ड 10, उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देशबंधु सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, टेलीग्राम को लेकर आईआईटी निदेशक से तर्क वितर्क, केंद्र सरकार ने कहा टेलीग्राम पर हो रही हैरान करने वाली गतिविधियां। राजस्थान पत्रिका ने लाहौल स्पीति में सैलानियों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, वादियों में फुर्सत के पल, स्पीति में दिखी बर्फ, सैलानी हुए खुश। लोक सत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर छात्रों के मनोबल टूटने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, पेपर लीक से टूटता मनोबल, संपादक का कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरी नहीं दर्शाती बल्कि ये युवाओं के सपनों पर चोट करती है।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम निशित कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू अटेंड वीवा टेक समिट इन पेरिस विद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल माक्रों। पीएम मोदी टू ऑल्सो एड्रेस मेंबर्स ऑफ इंडियन कम्युनिटी इन फ्रेंच कैपिटल। President Draupadi Murmu to embark on a 5-day visit to Madhya Pradesh and Odisha beginning today. Polling for 2 Rajya Sabha seats from Jharkhand and 1 from Mizoram to take place today. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement to come into force on the 15th of July this year. US President Donald Trump signs 14-point peace deal with Iran to end West Asia conflict. And in men's cricket, India beat Afghanistan by 170 runs in the second ODI of the 3-match series to take unassailable 2-0 lead. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi arrived in Paris last night for the final leg of his visit to France. Upon his arrival in the French capital, Mr. Modi received a warm welcome from the members of the Indian community gathered at his hotel.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

टॉक शुरू हो गया है आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर। मैं हूं आपके साथ नीतू। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें गाने की तरफ, आपको एक बार फिर से याद दिला देती हूं कि ये है रिक्वेस्ट बेस्ड शो और इसमें आप अपनी पसंद के गीतों की फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdelhi@gmail.com। तो बस जल्दी से अपना फोन उठाइए, वैसे फोन तो हाथ में ही होता है, तो आप अपने फोन में ईमेल खोलिए और ये अपनी पसंद का गाना लिखकर हम तक पहुंचा दीजिए। पहला गाना एक बड़ा ही नॉटी सा गाना है जो मैं आपको सुनवाने जा रही हूं। दिग्दर्शन गौर, कविता राधा नामदेव, रानी शर्मा, संजय ढींगिया, अनिल जैन, संदीप मक्कर, दर्शन भाई की पसंद का। फिल्म है हाफ टिकट और किशोर कुमार अपने नॉटीएस्ट वर्जन में है इस गाने में।

0: करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बड़के मुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय

0: गुजरिया।
1: ये गाना अगर आपने देखा होगा ना स्क्रीन पे तो आपको मजा आया होगा सुनने में भी, क्योंकि इसमें प्राण हैं और किशोर कुमार हैं, जो कि लड़की की आवाज में भी किशोर कुमार ने गाया है और प्राण को इतना तंग कर रहे हैं वो गाने में कि बस पूछे मत। खैर आगे बढ़ते हैं, अगला गाना जो सुनना चाहा है बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और आराध्या ने सुनना चाहा है गीत फिल्म।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
2: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
3: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
5: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
6: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

ताजमहल फिल्म से था ये कलाम और इसकी फरमाइश हम तक पहुंचाई थी अहमद भाई फूल वाले, दुखनी सदा फारजू, जूही इकबाल, इमरान अहमद और आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद और सभी फूल वाले फैमिली ने ताजमहल फिल्म का कोई गीत सुनना चाहा था। तो उम्मीद करते हैं आपने अपनी पसंद का गीत सुन लिया होगा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और ये है दिल का मेल बॉक्स, जिसमें आज याद किया जाएगा अब दान सिंह जी को। दान सिंह जी के बारे में शायद आप जानते ना हो, उनका एक गाना अगर आप सुन लेंगे ना तो आप पहचान जाएंगे। वो संगीतकार जिनका ये गाना आज तक फेमस है और इस गाने को सुनना चाहा है मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और बाकी सभी परिवार के सदस्यों ने। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, गाना सुन लेते हैं। मुकेश जी की आवाज में है ये गाना, माय लव फिल्म से।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आंख मिचोली तो इन साहब ने खेली है, जिनको जिनकी पसंद पर ये गाना आपको सुनाया गया है, अजीत भावसार और प्रमिला भावसार। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप कोई गाने की फरमाइश भेजते हैं तो बहुत ही आसान सा तरीका है कि आप उसे लिख दीजिए। आप ज्यादा कारीगरी मत कीजिए, ब्लैक सरफेस पे आपने जो भी लिखा ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो तो बाई चांस मैंने उसको सिलेक्ट किया तो मुझे नजर आया कि उसमें गाना है। और इतना टाइम होता नहीं है रेडियो पर ना, जब आप लाइव शो करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट बस इतनी है कि सिंपल शब्दों में अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा दीजिए। अब इस प्रोग्राम का आखिरी गाना जो है वो आप तक पहुंच रहा है, सुनील सुषमा राजवीर अनन्या गायकवाड़ की पसंद पर। आप इस गाने का आनंद उठाइए और नीतू को इजाजत दीजिए। मैं तस्वीर में मिलती हूं आपसे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं, जहां प्रवासी भारतीय समुदाय ने उनका शानदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांसीसी व्यापार जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ कई उच्चस्तरीय बैठकें भी करेंगे। इससे पहले कल G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ के देशों की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर्स दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियां में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए डिजिटल तकनीक तक सुरक्षित पहुंच से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। इन घोषणाओं का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल ओमकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी मैदान में हैं। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे से होगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने दोनों देशों के बीच शत्रुता समाप्त करने के लिए 14 सूत्री शांति समझौते पर वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर कर दिए हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने भी समझौते पर हस्ताक्षर की पुष्टि की है। भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने क्रोएशिया के खिलाफ 4-2 की जीत के साथ ग्रुप एल में अपने अभियान की शुरूआत की। ग्रुप के पहले मैच में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 की बराबरी पर रहा। पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो फीफा विश्व कप मैच में शुरुआती लाइनअप में जगह बनाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सत्य निष्ठा से धन प्राप्त होता है और निस्वार्थ सेवा से प्रसिद्धि मिलती है। निरंतर अभ्यास से ज्ञान प्राप्त होता है और कर्म से बुद्धिमत्ता आती है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत के सुभाषितम को साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने आज महान योद्धा रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई के वीर नेतृत्व ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान की। घरेलू शेयर बाजार आज शुरुआती कारोबार में लगभग सपाट कारोबार कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स करीब 60 अंक गिरकर 77,096 पर और निफ्टी मामूली गिरावट के साथ 24,077 के आसपास कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सतपुड़ा की रानी के नाम से मशहूर है पंचमणि, जो कि है हमारी आज की मंजिल, जो प्रकृति की गोद में बसी एक ऐसी जगह है जो मेट्रो सिटीज की हलचल से दूर आपको एक सुकून की दुनिया मिली जाती है और छुट्टियां मनाने के लिए तो एकदम परफेक्ट है। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, नीतू के साथ ये है तस्वीर, जिसमें आज हम बात करेंगे सतपुड़ा की रानी के नाम से मशहूर पंचमणि की।

मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच बसा हिल स्टेशन है पंचमणि, जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पंचमणि बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। यूं तो ये एक प्राकृतिक स्थल है, मगर यहां देखने के लिए बहुत कुछ है। मॉनसून में तो ये जगह एकदम जादुई एहसास दिलाती है, जब नीचे घना जंगल और आसमान पर बादलों का वास होता है। ऐसे में जब कभी सूरज बादलों की ओर से झांकता है ना, तो कमाल का नजारा होता है। वैसे यहां का धूपगढ़ सूर्यास्त के लिए ही मशहूर है, जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान कहा जाता है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी FM गोल्ड पर तस्वीर सुन रहे हैं आप और हम बातें कर रहे हैं पंचमणि की। पंचमणि का बाइसन लॉज एंड म्यूजियम जो है वो कैप्टन फोर्सिथ से जुड़ा हुआ है, जिन्हें पंचमणि खोजने का श्रेय दिया जाता है। ये लॉज

मानचित्र यानी कि मैप वगैरह सब देख सकते हैं और उनके बारे में ढेर सारी जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। यहां एक ओपन थिएटर भी है जिनमें वन्य जीवों पर फिल्में, वृत्तचित्र और प्रस्तुतियां जो हैं वो दिखाई जाती हैं। पंचमणि के इंटरप्रिटेशन सेंटर में आप पंचमणि और उसके आसपास की खूबसूरत तस्वीरें देख सकते हैं और खोरपू जनजातियों की जीवन शैली की एक झलक भी पा सकते हैं जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर बसे गांव में रहते हैं।

पंचमणि नाम जो है वो दो शब्दों से बना है, पंच और मणि, यानी पांच गुफाएं जो पांडव गुफाओं के नाम से प्रसिद्ध हैं। किंवदंती कहती है कि इन गुफाओं का निर्माण महाभारत काल के पांच

कान भी है जो नाग के तने हुए फन की तरह दिखती है, और इसीलिए लोग जो हैं यहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो इसे शेषनाग कहते हैं इस चट्टान को। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, और ये है तस्वीर जिसमें बातें हो रही हैं पंचमणि की।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
5: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
6: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भर...

0: करते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
1: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स, उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क, डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
0: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

तस्वीर सुन रहे हैं आप नीतू के साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। और आज हम बातें कर रहे हैं पंचमणि की। पंचमणि पर प्रकृति की भरपूर कृपा है और इस प्राकृतिक स्थल की हर प्राकृतिक स्थल की तरह यहां भी कुदरत ने अपनी खूबसूरती का खजाना लुटाया हुआ है। खासकर झरनों की बात करें ना तो ऐसी भरमार है यहां पर, बहुत सारे झरने हैं। बी फॉल्स, अप्सरा विहार फॉल्स, सिल्वर फॉल्स, ये सब आपकी यात्रा को ना यादगार बना देंगे। बी फॉल्स को जमुना प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे शानदार झरना है और पंचमणि बस स्टैंड से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। दूर से चट्टानों पर बहता इसका पानी मधुमक्खी की तरह बिन बनाने की आवाज करता है, इसीलिए इसे बी फॉल्स कहा जाता है। सिल्वर फॉल्स में पानी 150 फीट की ऊंचाई से गिरता है और अप्सरा विहार फॉल्स 10 मिनट की डाउनहिल ट्रेल है। ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश काल में ब्रिटिश महिलाएं यहां स्नान करती थीं। उनके गोरे रंग के कारण स्थानीय लोग उन्हें अप्सरा मानते थे और इसीलिए इस कुंड का नाम अप्सरा विहार हो गया।

आपको वन्य जीवों को देखना और उनके जीवन को करीब से देखना पसंद है तो आप सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में जीप सफारी का आनंद ले सकते हैं। जानवरों, सरीसृपों और पक्षियों की अनेक प्रजातियां यहां पाई जाती हैं, जिनमें से कई तो लुप्त प्राय हैं। आप पंचमणी में थोड़ा सा रोमांच अगर ढूंढ रहे हैं तो फिर आप कर सकते हैं पैरा मोटरिंग, एटीवी बाइक राइड, पैराग्लाइडिंग, रॉक क्लाइंबिंग और भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज। और अगर आप इनमें से कुछ नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप साइकिलिंग, किनोइंग और ट्रैकिंग जैसी प्रदूषण मुक्त गतिविधियां कर सकते हैं, ताकि पंचमणि जितना साफ सुथरा है, जितना खूबसूरत है, वैसा ही खूबसूरत हर किसी को लगे।

0: मिडियम वेव 213.67 मीटर को 1404 किलोहर्जमा यो आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्र हो। साथै यस समय श्रोताहरूले हामीलाई एफएम कञ्चनजंघा 103 मेगाहर्ज अनि न्यूज अन एआईआर मोबाइल एप मार्फत पनि सुनिरहनु भएको छ।
1: निर्वाचन आयोग भारत सरकारको निर्देश अनुसार सिक्किममा एसआईआर अर्थात मतदाता सूचीमा विशेष सघन पुनरावलोकन कार्य जारी रहेको छ।
2: गत 30 मईदेखि 28 जून 2026 सम्म बीएलओहरूले घर घरमा गएर इनुमेरेशन फर्म वितरण अनि संकलन गर्नेछन्।
1: सबै मतदातालाई आफ्नो फोटो सहित फारम राम्ररी भरेर समयमा नै बुझाउने अनुरोध छ।
2: 1 जुलाई 2026 सम्म 18 वर्ष पुग्ने योग्य मतदाताहरूले पनि फर्म 6 बुझाउन सक्नेछन्।
1: फारम ईसीआईएनईटी एप अथवा भोटर पोर्टल मार्फत अनलाइन पनि बुझाउन सकिन्छ।
2: राज्य चुनाव आयोग सिक्किम सरकारद्वारा जनहितमा जारी।
3: बड़ी बहू,
4: ये तुम्हारे नाम
3: इतनी भी क्या जल्दी थी?
4: अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम
3: और ये मेरी गुड़िया के नाम।
4: पर दादी, आपके नाम?
5: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
4: शुभ शुभ बोलो। क्या
5: आरबीआई कहता है?
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। श्रोता, अब प्रस्तुत छ कार्यक्रम नारी संसार।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
2: इन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, हर ठोकर इंसान को गिरने से नहीं लगती, कुछ ठोकर सुधरने, संभलने और सीखने से भी लगती हैं।
3: बहुत सुंदर विचार भेजा है आप लोगों ने, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखा है,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। वीर गाथा के अंतर्गत लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धेशीर बुरजोर जी तारापुर जी के व्यक्तित्व पर केंद्रित कार्यक्रम भी सुना। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: नासिक महाराष्ट्र से प्रशांत पाटिल जी का संदेश आया है,
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलौदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
3: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का,
2: ग्वालियर सुरेश खुराना पप्पी अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा।
3: आज जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हमारी चर्चा चल रही है कुछ विशेष झीलों पर। तो अब तक हमने बातचीत की लोकटक और मानसरोवर झील के बारे में, तो आइए जानते हैं आज हम किस खास झील के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। श्रोताओं, वो झील है चिल्का झील। बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वैसे तकनीकी रूप से ये एक लगून है। तो आइए पहले जान लिया जाए कि लगून किसे कहते हैं। जी श्रोताओं, लगून समुद्र या महासागर के किनारे एक उथले जलाशय को कहते हैं जो समुद्र की रेत, कोरल चट्टानों या बड़े बड़े रेतीले टीलों के कारण समुद्र से अलग दिखाई पड़ता है। यानी जब कोई प्राकृतिक अवरोध आंशिक रूप से किसी बड़े जलाशय को समुद्र से अलग करता है तो उसे हम लगून कहेंगे। विशेष बात यह है कि लगून सामान्यतः उथला होता है, यह समुद्र से भी जुड़ा होता है लेकिन पूरी तरह से खुला नहीं होता। तो आपको बता दें कि भारत में दो लगून है, चिल्का झील लगून और लक्षद्वीप लगून। एक और विशेष बात श्रोताओं, समुद्र से जुड़ा होने के कारण चिल्का झील का पानी थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि लगून में मीठे जल वाली नदियां भी गिरती हैं, जिसके कारण यहाँ का पानी थोड़ा मीठा और थोड़ा खारा हो सकता है। चिल्का झील इसका सुंदर उदाहरण है। तो आइए अब जान लें कि चिल्का झील है कहाँ। तो आपको बता दें कि ये ओडिशा के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैली हुई है। यहाँ लगभग 52 नदी नालों का मीठा पानी और बंगाल की खाड़ी का खारा पानी दोनों आते हैं। एक और रोचक बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा श्रोताओं, और वो ये है कि यहाँ डॉल्फिन मछलियां भी मिलती हैं, जिन्हें इरावडी डॉल्फिन कहा जाता है। ये प्रजाति मात्र दुनिया में दो जगहों पर ही पाई जाती है। इन्हें पानी में उछलते कूदते, जल क्रीड़ा करते बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। हाँ, स्वभाव से ये डॉल्फिन शर्मीली होती हैं। एक और तथ्य आपके साथ साझा करना चाहता हूँ और वो ये है कि सर्दियों के मौसम में चिल्का झील में बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी आते हैं। आप पूछेंगे कि ये कहाँ से आते हैं, तो आपको बताए देते हैं, ये प्रवासी पक्षी साइबेरिया, चीन, मंगोलिया और रूस जैसे देशों से आते हैं। जरा सोचिए श्रोताओ, हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके इन पक्षियों का चिल्का झील में आना कितना अनूठा है। इसी बात पर एक जानकारी और आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि यहाँ आने वाले पक्षियों की संख्या लाखों में बताई जाती है, जो करीब 225 से भी अधिक प्रजातियों के हैं। चिल्का झील का नलबन द्वीप जाना माना पक्षी विहार या अभयारण्य माना जाता है। बहुत से सैलानी यहाँ मात्र पक्षियों को देखने के लिए ही आते हैं। ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे सन 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। जहाँ तक मछलियों की बात है, यहाँ मछलियों की 200 से भी ज्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो मिश्रित मीठे पानी और खारे पानी में रह सकती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ लाल केकड़े, मछली पकड़ने वाली बिल्लियाँ भी पाई जाती हैं, जिन्हें फिशिंग कैट कहा जाता है। श्रोताओ, चिल्का झील में बोट राइड या नौकायन का अलग ही मजा है। यहाँ का सबसे यादगार अनुभव है सूर्योदय और सूर्यास्त की बेला में सूर्य और झील का नजारा, पक्षियों का मधुर कलरव और जल में मछलियों को उछलते कूदते हुए देखना। इतिहास बताता है कि प्राचीन काल में चिल्का झील से समुद्री व्यापार भी होता था, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। बंगाल की खाड़ी को ओडिशा में कलिंग सागर भी कहते थे। श्रोताओं, चिल्का झील से प्राचीन कलिंग के व्यापारी और नाविक सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों से आते थे। श्रोताओं, क्या आपने बोइता बंदाना के बारे में कुछ सुना है? है ना बड़ा दिलचस्प नाम। तो आपको बता दूं कि बोइता बंदाना का अर्थ है नावों की पूजा। बोइता यानी नाव और बंदाना यानी पूजा। इस उत्सव में जहाजों या बड़ी बड़ी नावों की पूजा होती थी। ये एक पारंपरिक त्योहार है जो ओडिशा की समुद्री संस्कृति की विरासत है। इसे जनजातीय या आदिवासी भाषा में डांगा भाषा भी कहते हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सन 2025 में ये 5 नवंबर को मनाया गया था। इस त्योहार में एक लोकप्रिय गीत या मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र है आ का मा बोई। आपको बता दूं कि ये नाविकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना गीत है। तो श्रोताओं, चिल्का झील न सिर्फ जैव विविधता का खजाना है, लेकिन हजारों लोगों की जीविका का साधन और कलिंग की समुद्री विरासत की गवाह भी। ये सचमुच भारत की एक अनूठी झील है। तो ये थी श्रोताओं हमारी आज की जानकारी विश्व विख्यात चिल्का झील के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ, हमारा IVRS नंबर भी नोट कर लें। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की लगातार जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रम की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है चिड़िया की बच्ची।
2: इस कार्यक्रम के द्वारा एक चिड़िया की बच्ची के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वो अपनी माँ की प्रतीक्षा करती है और अपने घोंसले में आनंद से गीत गाते हुए अन्य पक्षियों से बातें भी करती है।
4: माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वो गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए

ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन करा रहा था। माधव दास मसनत के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी, वो खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी।

0: माधव दास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वो उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वो अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा,
1: आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो।
0: चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है, वो एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली,
2: मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी।
1: हाँ, बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। ना, जाओ नहीं, बैठो। मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है।
0: चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि ये उससे गलती तो नहीं हुई कि वो यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वो बोली,
2: मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें।
1: मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों ना रहो।
2: मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। मैं जरा घर से उड़ाई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच ना करें।
1: प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए। माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया।
0: चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वो बोली,
2: मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? दो दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ।
1: बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो?
2: मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती।
1: तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधव दास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ।
2: पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए।
1: चिड़िया, तू मेरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ।
2: तुम सेठ हो।

0: मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी। मैं मालामाल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। मालामाल किसे कहते हैं? क्या मुझे वो तुम्हारा मालामाल होना चाहिए?
1: अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है। तू सोना नहीं जानती? सोना, उसी की जगत को तृष्णा है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए। तो उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करिए, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी।
0: वो सोना क्या चीज होती है?
1: तू क्या जानेगी? तो चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात तक कर लेता हूं, उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है। पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है री चिड़िया? तो इस बात को समझती क्यों नहीं?
0: मैं नादान हूं, मैं कुछ समझती नहीं। पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी।
1: ठहर ठहर ठहर। इस अपने पास के फूल को तूने देखा? ये एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं। ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? हाँ, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यही रह।
0: सेठ, मैं अपने को नहीं जानती। इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है, और मुझे यह देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो।
1: हाँ।
0: रात में अंधेरा बहुत हो जाता है, और मैं राह भूल जाऊंगी।
1: अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो।

0: कल आना, परसों आना, रोज आना।
1: ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वो चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे,
0: सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं?
2: दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है।
0: हाँ जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है।
2: सेठ मुझे देर हो रही है।
0: देर अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो।
2: क्या करूं सेठ, मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी।
3: देखते क्या हो, यही मौका है, पकड़ लो इसे।
4: जी मालिक।
1: इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वो चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी।
0: हाथ से निकल गई।
1: नौकर के फैले हुए पंजे में वो आकर भी नहीं आ सकी। तब वो उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी।
2: माँ
1: ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा,
5: क्या है बच्ची? क्या हुआ बेटा, बता बेटा।
1: पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही।
5: बड़े
1: देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वो पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक न खोलेगी।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम चिड़िया की बच्ची। तो श्रोताओं, अब हमारा कार्यक्रम यानी उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: श्रोताले यतिन्जेल सुनिरहनु भएको थियो एनसीईआरटी माथि एक प्रायोजित कार्यक्रम हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। श्रोता, अब आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट सम्प्रसार गरी सुनाउनेछौ विविध भारती सेवाहरू।

कसा हुआ डायरेक्शन फिल्म दर्शकों के बीच काफी पसंद की गई। बस इसके बाद उनके करियर ग्राफ जैसे उनका करियर ग्राफ ऊपर ही उठता चला गया। सुपरहिट इस फिल्म में उन्होंने अपनी निर्देशन प्रतिभा का लोहा मनवाया। ये फिल्म भी खोया पाया फॉर्मूले पर आधारित रही। इसके बाद तो इसी आधार को लेकर उन्होंने अनेक सुपरहिट फिल्म्स हमें सौंपी। भाई हो तो ऐसा, रामपुर का लक्ष्मण, आग गले लग जा और रोटी जैसी फिल्में।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉकेट टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और कलाकार बेमिसाल का ये सफर, हसीन सा सफर, डायरेक्टर मनमोहन देसाई की बातें करते हुए, उनकी करियर के बारे में जानकारी साझा करते हुए आपके साथ बीत रहा है। वर्ष 1977 की अब बात करते हैं उनके करियर का, जो कि अहम साल रहा। इस साल उनकी परवरिश, धर्मवीर, चाचा भतीजा, अमर अकबर, एंथनी जैसी सुपरहिट फिल्में प्रदर्शित हुई। उनका सपना ही यही था कि वो दर्शकों के लिए बड़े पैमाने पर मनोरंजक फिल्मों का निर्माण करें। अपने इसी ख्वाब के लिए उन्होंने अमर अकबर एंथनी के जरिए फिल्म इंडस्ट्री में निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा और AMKD बैनर की स्थापना की। इस फिल्म के बाद से मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन साहब के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग कायम हो गई थी। परवरिश फिल्म का ये गीत सुन लेते हैं मोहम्मद रफी साहब।

हमेशा अपने दर्शकों को कुछ नया देने वाले मनमोहन देसाई ने 1981 में फिल्म नसीब का निर्माण किया। इस फिल्म के गाने जॉन जानी जनार्दन में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के नामी सितारों की पूरी फौज ही खड़ी कर दी थी। इंडस्ट्री के इतिहास में यह पहला मौका रहा जब एक गाने में फिल्म इंडस्ट्री के कई दिग्गजों की उपस्थिति रही। कह सकते हैं मनमोहन देसाई अपनी तरह के एक अलग ही निर्देशक रहे, जिन्होंने फिल्म में मनोरंजन की एक खास अहमियत दिखाई। उसी को ध्यान में रखते हुए वो फिल्म बनाते चले गए। 1983 में मनमोहन देसाई निर्मित एक और फिल्म प्रदर्शित हुई, कुली, जो हिंदी फिल्म जगत में अपना नाम दर्ज करा गई। दरअसल इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही अमिताभ बच्चन गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अमिताभ साहब के ठीक होने के बाद मनमोहन देसाई ने उन्हें लेकर कई फिल्म का निर्माण किया। 1985 में अमिताभ अभिनीत फिल्म मर्द, 1988 में गंगा जमुना सरस्वती और इसके बाद फिल्म तूफान। मर्द फिल्म के बाद उनकी बाकी फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल दिखा नहीं पाई। इसी के चलते उनके निर्देशन से कुछ दूरी सी बन गई।

बहुमुखी प्रतिभा के धनी मनमोहन देसाई ने अपने करियर के शुरुआत में राजकुमार और किस्मत फिल्मों का इन फिल्मों की कहानी भी लिखी थी। इसके अलावा 1963 में प्रदर्शित ब्लफ मास्टर का स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही लिखा था। अपने 3 दशक से भी ज्यादा लंबे सिने करियर में मनमोहन देसाई ने लगभग 20 फिल्मों का निर्देशन किया। मनमोहन देसाई का सिनेमा मसाला सिनेमा रहा। वो दूसरे फिल्म मेकर्स की तुलना में डबल तड़का लगाकर अपनी फिल्में परोसते थे। उन्होंने फिल्म समीक्षकों की कभी परवाह नहीं की। जो रास्ता उन्होंने एक बार चुन लिया आखिर तक उसी पर चलते रहे। उनका सीधा सा तर्क रहा, सिनेमा मेरे लिए शिक्षा या कला बिल्कुल नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार और अभावों के बीच रहने वाला आदमी जब फिल्म देखने जाता है तो उसे मनोरंजन और सिर्फ मनोरंजन चाहिए होता है। मैं हमेशा मनोरंजन प्रधान फिल्में बनाता रहूंगा और यही उन्होंने किया भी। मनमोहन देसाई मिलनसार और हसमुख स्वभाव के व्यक्ति रहे। हिंदी सिनेमा के लिए उनका अतुलनीय योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता।

इसी के साथ अंजलि आपसे ले रही है इजाजत, लेकिन आप सुनते रहें हमेशा आकाशवाणी गोल्ड 100.1। कुछ ही देर में सुनिएगा उर्दू खबरें, उसके बाद अंग्रेजी और हिंदी में समाचार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के सरकर्दा ताजिरों के साथ आला सतह की कई मीटिंग्स करेंगे। वो वीवा टेक समिट में भी शिरकत करेंगे। मरकज माली साल 2026-27 में 26 किलोमीटर देही सड़कों की तामीर करेगा, जिस पर 18,900 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऋतव्रत बनर्जी को असेंबली में अपोजिशन रहनुमा मुकर्रर करने के फैसले पर कोई उबूरी हुक्म देने से इनकार कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक सड़क हादसे में एक ही गांव के 7 अफराद हलाक हो गए। अमरीका और ईरान के दरमियान एक मुफाहमतनामा पर अमल शुरू हो गया है, जिसकी वजह से अमन मुजाकरात की उम्मीदें पैदा हो गई हैं। और हॉकी में भारत ने उरुग्वे को 3-2 से हराया, जिसके बाद वो न्यूजीलैंड में FIH खवातीन के नेशंस कप में सेमीफाइनल में दाखिल हो गया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के सरकर्दा ताजिरों के साथ बहुत सी आला सतह की मीटिंगें करेंगे। ये मीटिंगें वो भारत फ्रांस इक्तसादी और सनती तआवुन को गहरा करने की कोशिशों के हिस्से के तौर पर करेंगे। तफसील हमारे नामानिगार से।
1: वजीर आजम सेंट गोबेन के चेयरमैन और CEO बेनोइट बेजीन के साथ बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि इसमें माहौल के लिए साजगार मैन्युफैक्चरिंग और मुस्तकबिल बुनियादी ढांचे पर तवज्जो दी जाएगी। वो स्मार्ट मोबिलिटी और रेल जदीदकारी में ताउन के मौके तलाश करने के लिए एलस्टॉम के CEO से भी मुलाकात करेंगे। टेक्नोलॉजी के शोबे में वजीर आजम मसनूई जहानत इख्तरा और जिम्मेदार AI हुक्मरानी के बारे में मिस्टर AI के बानी साथी और CEO आर्थर मेंच के साथ बातचीत करेंगे। मीटिंगों का यह सिलसिला CMA CGM ग्रुप के चेयरमैन और CEO रोडोल्फ साडे की मीटिंग के साथ खत्म हो जाएगा, जिसमें उम्मीद है कि वो समुद्र के रास्ते तिजारत, बंदरगाहों को जदीद शक्ल दिए जाने और मुस्तहकम आलमी सप्लाई चेन पर तबादला ख्याल करेंगे। इन सरगर्मियों से भारत और फ्रांस के दरमियान बढ़ती हुई इक्तिसादी शराकतदारी की अहमियत का इजहार होता है। महेश चौबाडे की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: वजीर आजम फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक समिट में भी शिरकत करेंगे। ये समिट टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप की यूरोप की सबसे बड़ी तकरीब है, जिसमें उम्मीद है कि जनाब मोदी भारत के इख्तरा से मुतालिक तरक्की पाते हुए इको निजाम और टेक्नोलॉजी की पेशरफ को उजागर करेंगे। वीवा टेक समिट में भारत का सबसे बड़ा पवेलियन है, जो भारत और यूरोप के दरमियान इख्तरा से मुतालिक इको निजाम की शराकतदारी के बड़े इम्कान की अलामत है। मरकज 2026-27 के माली साल के दौरान देही इलाकों में 26,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें तामीर करेगा। देही तरक्की की वजारत के मुताबिक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और देही इलाकों में मुतल्लिका सरगर्मियों के लिए 18,900 करोड़ रुपए से ज्यादा मुख्तस किए गए हैं। आला सतह की एक मीटिंग में देही इलाकों में सड़कों से मुतल्लिक प्रोजेक्टों की पेशरफ का जायजा लिया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ओडिशा और मध्य प्रदेश के 5 रोजा दौरे पर आज सुबह इंदौर पहुंची। उनका देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डे पर गवर्नर मंगूभाई पटेल और वजीर आला मोहन यादव और आला हुकाम ने शानदार इस्तकबाल किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू बैतूल में रूहानी बेदारी के जरिए कबायली मुआशरे को बाइख्तियार बनाने के एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। झारखंड में आज राज्यसभा की 2 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM की उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा और आजाद उम्मीदवार परिमल नाथवानी मैदान में हैं। पोलिंग सुबह 9 बजे शुरू हुई, जो शाम 4 बजे तक जारी रहेगी, जबकि वोटों की गिनती शाम 5 बजे शुरू होगी और इसके बाद नतीजे का ऐलान किया जाएगा। असेंबली के तमाम 81 अरकान के अपना वोट डालने का इम्कान है। मिजोरम में राज्यसभा की वाहिद सीट के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। इस चुनाव में हुक्मरान जोराम पीपल्स मूवमेंट और अपोजिशन मिजो नेशनल फ्रंट के उम्मीदवारों के दरमियान सीधा मुकाबला है। दिल्ली की वजीराला रेखा गुप्ता ने आज नई दिल्ली में अवामी बहबूद के 3 रोजा कैंपों का इफ्तिताह किया। ये कैंप वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के मुहिम से तरगीब हासिल करके शुरू किए गए हैं। कैंप के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहतरमा गुप्ता ने कहा कि हुकूमत ने कौमी राजधानी के 42 मकामात पर इन कैंपों का इनेकाद किया है। उन्होंने यह भी कहा कि शहरी, मरकजी और दिल्ली हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं।
2: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल हैं, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा

लता मंगेशकर, शैलेन्द्र सिंह और साथियों को आपने सुना। फिल्म का नाम था दो जासूस। गीतकार हसरत जयपुरी थे और संगीत दिया था रविन्द्र जैन ने। इस गाने के साथ ही आज का सुरीला सफर कार्यक्रम की अब मैं आपसे चाहूंगी इजाजत, ये पूछते हुए कि कैसा लगा आपको आज का ये नौका विहार। अच्छा लगा ना? तो चलिए, याद रखिएगा इस नौका विहार को, मन में संजो कर रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इसी उम्मीद के साथ कि आज का ये नौका विहार आपको पसंद आया होगा। अब इस कार्यक्रम से, यानी सुरीला सफर कार्यक्रम से, मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत। फिर मिलूंगी किसी और कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्चस्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। विवाटेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल हैं, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारी की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्णा राव की एकलपीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने

0: वादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा, मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाटबद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, बल्कि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में यह बात कही। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंगरोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ओआरएस, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमरीका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
2: अमरीका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमरीका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बना आएगा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है।

0: की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित एफआईएच महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त देखी गई। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 158 अंक बढ़कर 77,314 पर और निफ्टी 41 अंक बढ़कर 24,127 पर कारोबार कर रहा था। अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिनों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ आंधी की आशंका है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के प्रमुख कारोबारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू। शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी एफआईएच महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। साथै यस समय श्रोताहरूले हामीलाई एफएम कञ्चनजंघा 103 मेगाहर्ज अनि न्यूज अन एआईआर मोबाइल एप मार्फत पनि सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, यस सुन्नुहोस् हाम्रो लाइभ फोन इन कार्यक्रम सम्बन्धी एक सूचना। भोलि 19 तारीक जून 2026 शुक्रबार साँझ 6:05 प्रसार गरिने ग्रामीण कार्यक्रममा हामी लिएर आउनेछौ अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको सन्दर्भमा लाइभ फोन इन कार्यक्रम। विषय रहनेछ योग गरौं निरोगी बनाऊ। यस योग विषयमाथि अधिक जानकारी दिन भने हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित रहनुहुनेछ योग प्रशिक्षक श्री राम प्रसाद पौड्याल। र यस विषयमाथि कुनै प्रश्न वा जिज्ञासाहरू भए हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 03592201171035922011 कल गर्न सक्नुहुनेछ। श्रोता, याद राख्नुहोला दिन अनि समय भोलि 19 तारीक जून 2026 शुक्रबार साँझ 6:05 अनि फोन नम्बर पुनः एकपटक नोट गर्नुहोला 03592201171035922011171। सूचना पूरा भयो।
2: निर्वाचन आयोग भारत सरकारको निर्देश अनुसार सिक्किममा एसआईआर अर्थात मतदाता सूचीमा विशेष सघन पुनरावलोकन कार्य जारी रहेको छ।
3: गत 30 मईदेखि 28 जून 2026 सम्म बीएलओहरूले घर घरमा गएर इनुमेरेशन फर्म वितरण अनि संकलन गर्नेछन्।
2: सबै मतदातालाई आफ्नो फोटो सहित फारम राम्ररी भरेर समयमा नै बुझाउने अनुरोध छ।
3: 1 जुलाई 2026 सम्म 18 वर्ष पुग्ने योग्य मतदाता

0: गरेको बताउनु भएको छ। अब समाचार विस्तारमा, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत फ्रान्स आर्थिक र औद्योगिक सहयोगलाई थप बलियो बनाउने प्रयासको एक भागको रूपमा आज पेरिसमा फ्रान्सका प्रमुख व्यापारिक नेताहरूसँग उच्च स्तरीय बैठक गर्नुहुनेछ। प्रधानमन्त्री श्री मोदीले सेन्ट गोबेनका अध्यक्ष र मुख्य कार्यकारी अधिकारी बेनोइट बाजिनसँग छलफल गर्नुहुनेछ, जसमा हरित उत्पादन र स्थायी बुनियादी ढाँचा बारे छलफल केन्द्रित रहनेछ। उहाँले स्मार्ट मोबिलिटी र रेल आधुनिकीकरणमा सहयोगको सम्भावनाको पत्तो लगाउन एल्स्टमका मुख्य कार्यकारी अधिकारीलाई पनि भेट गर्नुहुनेछ। तकनिकीको क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री श्री मोदीले मिस्ट्रल एआईका सह संस्थापक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर्थर मेन्ससँग कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवीनता र जिम्मेवारी पूर्ण एआई गवर्नेन्स बारे अन्तर्क्रिया गर्नुहुनेछ।
1: प्रधानमंत्री अपनी चर्चाओं की शुरुआत सेंट गोबा के चेयरमैन और सीईओ बनवा बेजा के साथ करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। वह स्मार्ट मोबिलिटी और रेल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एल्स्टॉम के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और जिम्मेदार एआई गवर्नेंस पर विस्तार एआई के सह संस्थापक और सीईओ आर्थर मेंच के साथ बातचीत करेंगे। इन बैठकों का समापन सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ रोदाल सादे के साथ होगा, जहां समुद्री व्यापार, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बैठक भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को रेखांकित करती है। आकाशवाणी समाचार के लिए पेरिस फ्रांस से महेश सोपड़े।
0: जी सात शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कृत्रिम बुद्धिमत्ताको सुरक्षित, समावेशी र मानव केन्द्रित विकासका लागि आह्वान गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, एआईको वास्तविक सफलता मशिनको क्षमतामा नभएर आम मानिसलाई सशक्त बनाउनमा निहित छ। एआईले शिक्षा र नवीनतालाई बढ़ावा दिन सक्ने तर गलत सूचना, डीप फेक र साइबर खतराबाट बाल बालिकालाई जोगाउन प्रभावकारी सुरक्षा उपायहरू आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सबै देशका लागि एआई तकनिकको पहुँच समान र लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले डीप फेक, साइबर ठगी र गलत सूचना नियन्त्रणका लागि वैश्विक सहयोग बढ़ाउनुपर्ने कुरामाथि पनि जोर दिनुभयो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार सम्झौता यस वर्षको 15 जुलाईदेखि लागू हुने बताउनु भएको छ। यसले भारत र ब्रिटेन माझ द्विपक्षीय व्यापार र निवेशलाई उल्लेखनीय रूपमा बढ़ाउनेछ। एक सामाजिक पोस्टमा प्रधानमन्त्री मोदीले भन्नुभएको छ, यस सम्झौताले भारतीय कृषकहरू, श्रमिकहरू, एमएसएमईहरू, स्टार्टअपहरू र नवप्रवर्तकहरूका लागि धेरै अवसरहरू खोल्नेछ र विकसित भारत 2047 लक्ष्य हासिल गर्नुमा अर्थपूर्ण योगदान दिनेछ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भोलि नयाँ दिल्लीमा प्रधानमन्त्री विकसित भारत रोजगार योजना अन्तर्गत 2400 करोड़ रूपियाँको प्रोत्साहन राशि वितरित गर्नुहुनेछ। नयाँ दिल्लीमा यस योजनाको बारेमा मीडियालाई जानकारी गराउनुहुँदै श्रम तथा रोजगार मन्त्री डाक्टर मनसुख मण्डाभियले गत वर्ष अगस्तदेखि पीएमवीबीआईवाई अन्तर्गत 63 लाख भन्दा अधिक कर्मचारीहरूलाई औपचारिक कार्यबलमा ल्याइएको उल्लेख गर्नुभयो, जसमा लगभग 30% महिलाहरू रहेको बताउनुभयो। उहाँले यस योजना अन्तर्गत प्रोत्साहित गरिएका 80% भन्दा अधिक प्रतिष्ठानहरू साना उद्यमहरू हुन्, जसमा 25 भन्दा कम श्रमिकहरू छन्। यो समाचार आकाशवाणीबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। ताजा समाचार जान्नका लागि हाम्रो सोशल मीडिया ह्याण्डल @AIR खरसाङ र फेसबुक आकाशवाणी समाचार नेपालीलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
0: अब रहल समाचार। राष्ट्रपति

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। ये भाषण भारत की तेजी से बढ़ती वैश्विक डिजिटल उपस्थिति पर केंद्रित होगा। विवाटेक सम्मेलन के इस संस्करण में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन होगा। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा की 5 दिन की यात्रा पर हैं। यात्रा के पहले दिन मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इंदौर में उनका स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति बैतूल में आध्यात्मिक जागृति द्वारा आदिवासी समुदायों का सशक्तिकरण कार्यक्रम में शामिल हुईं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि विकास की यात्रा में समाज का कोई भी वर्ग पीछे न छूटे।
1: 2047 विकसित भारत बनाने के लिए हम सोचे हैं। पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, ये देश एक जमीन का टुकड़ा नहीं है जिता जागता

0: राष्ट्र पुरुष है। राष्ट्र पुरुष का प्रत्येक अंग हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक अक्षत होना चाहिए, क्षति नहीं होना चाहिए। ऐसे ही ये भारत में रहने वाले जनता, कोई भी समाज पीछे ना रह जाए।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की यात्रा पर रहेंगी। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रूपये से अधिक की राशि आवंटित की गई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथीन्द्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर कोई भी अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्णा राव की एकलपीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी मैदान में हैं। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। अमरीका और ईरान के बीच ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिनों का समय मिल गया है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा। वहीं ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों के लिए सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा। इस समझौते के अंतर्गत संघर्ष विराम में लेबनान भी शामिल है। इससे इसराइल और हिजबुल्ला से जुड़े सीमा पार तनाव कम हो सकते हैं। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित एफआईएच महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत की ओर से दीपिका ने 2 गोल और दीपिका सोरेंग ने 1 गोल दागा। उरुग्वे की चियारा एम्पेनिनो और मेनुएला विलार ने गोल किए। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरूआत की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और दोपहर का वक्त है, गर्मी काफी ज्यादा है, तो जब तक बहुत जरूरी काम ना हो घर से बाहर ना निकलें, जब निकलें तो ढेर सारा पानी पीकर या कुछ भी तरल पदार्थ

लेकर ही निकलें और अपना खूब ख्याल रखें। और हम लेकर आ गए हैं आपके लिए आपके मन को भाने वाले प्यारे प्यारे गीत संगीत की महफिल, जिसका नाम है मन भावन, और मैं हूं आपके साथ शिव प्रकाश। आप अपनी पसंद अपने संदेश के जरिए हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है fmgoldaird@gmail.com और हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 9868867533। तो जनाब, बहुत सारे संदेश जो हमारे पुराने श्रोता हैं उनके हमारे पास स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पहला पैगाम हम शामिल कर लेते हैं, उससे पहले हम आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं और आप सभी को अभिवादन प्रेषित करते हैं। तो पहला जो नगमा हमने लिया है वो फिल्म है मेरा साया, स्वर है मोहम्मद रफी का, और फरमाइश बहुत सारे लोगों ने की है हमारे पास। बुराड़ी से, बुराड़ी जो दिल्ली में है, वहां से पैगाम आया है कैलाश, दिनेश, गोरांश, मायरा, रेनू, ये कहते हैं कि कोई भी अपनी पसंद का नगमा आप हमें सुनवा दीजिए। तो चलिए जी, इनके साथ ही जुड़े हुए हैं कैलाश चंद जी कोटपुतली राजस्थान से, और साथ ही हमारे पास किशन वजनानी, नीलम, स्वाति और किशु का रेलवे कॉलोनी आनंद विहार दिल्ली से ये पैगाम आया हुआ है। और उसके अलावा हमारे पास बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन का भी पैगाम आया हुआ है। और तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, ये जुड़े हुए हैं शाहदरा बिहारी कॉलोनी दिल्ली से। और चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना भी हमसे जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप हमसे जुड़े हुए हैं। और सनावत से शेख मूसा मोहसिन का हमारे पास पैगाम आया हुआ है, और साथ ही हमारे पास गरिमा का नई दिल्ली से ये पैगाम आया हुआ है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनके साथ उग्रसेन यादव, शकुंतला यादव भी जुड़े हुए हैं, और भी हमारे पास बहुत सारे पैगाम हैं, उनको भी हम शामिल कर लेते हैं। और एक बीच में आपसे गुजारिश है कि आप लोग बार बार पैगाम ना भेजें, अगर आपका पैगाम शामिल हो गया है तो अपने दूसरे साथियों को भी मौका दें कि उनका भी पैगाम शामिल हो जाए। गांव फरासी, जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी का भी हमारे पास पैगाम आया हुआ है। तो चलिए जनाब, बहुत ही प्यारा सा नगमा फिल्म आपकी कसम से, फिल्म मेरा साया से मोहम्मद रफी की आवाज में आप सबके लिए।

तो जी हाँ जनाब, आपके बहुत सारे पैगाम हमारे सामने हैं और भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे पास एक पैगाम आया हुआ है व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से, भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्यन्दु भूषण, संस्कृति और पौरुष का ये पैगाम है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही हमारे पास ऊपरकोट मोहल्ला चौक खुंटी बुलंदशहर से ये पैगाम आया हुआ है, मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और तमाम अब्बासी परिवार के सदस्य जुड़े हुए हैं। इन्होंने भी एक फरमाइश भेजी है, कोशिश रहेगी और आगे बढ़ते हैं, आपकी कुछ और फरमाइशें हम शामिल कर लेते हैं। इंदिरा नगर भवरपुर से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, राजू देवांगन, नेहा जगदीश देवांगन जुड़े हुए हैं। और साथ ही हमारे पास और भी पैगाम है, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, ओम सुरलकर का भी पैगाम आया हुआ है। और अहमद भाई फूल वाले, दुखना रानी, जूही इकबाल, इमरान अहमद, कापसहेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से, ये सब तो जुड़े हुए हैं, छोटी बलिया करजत मुंबई से, और इनके अलावा कापसहेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से जुड़े हुए आमना नसरीन बागवान, आमना परी और राबिया मंताशा, आशु अहमद भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और हमारे पास रामगढ़ कैंट से ये पैगाम आया हुआ है, महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिकलानी, बबीता मिकलानी, सुभाष योगी, डब्बू बब्बू का भी ये पैगाम आया हुआ है। और छत्तीसगढ़ पलारी से जुड़े हुए हैं प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा भी हमारे साथ। और गांव चौहल्ला बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया भी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो हमारे पास ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और नवाब अहमद भारती, शबाना भारती, अरहान अहमद भारती, सूफिया नवाब बलीमारान से जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए एक बहुत ही प्यारा सा नगमा आप लोगों की फरमाइश में से ही लिया है मैंने, फिल्म काला पत्थर है, लता जी और रफी साहब की आवाज़ में।

जी हाँ, आपने ट्यून किया आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप सुन रहे मन भवन। मैं हूं आपके साथ शिव प्रकाश। आपके जो पैगाम आ रहे हैं उनमें हमारे पास पैगाम आया है अनीता वर्मा जी का पीतमपुरा दिल्ली से, और इन्होंने एक फरमाइश भेजी है, फिल्म महुआ का गाना सुनना चाहती हैं। तो ये गाना हमने ले लिया है और कुछ पैगाम हम शामिल कर लेते हैं, उसके बाद ये गाना आप तक जरूर पहुंचेगा। और चाणक्य चौक गाजियाबाद से जुड़े हुए मनोहर लाल गांधी साहब, ये विजयनगर में ये जगह है, ये बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल भी जुड़े हुए हैं। और राठगांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर, रुचिका रामेकर, रामेकर परिवार के तमाम सदस्य जुड़े हुए हैं। और भी हमारे पास कई सारे पैगाम हैं। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया

वी देशमुख और कल्पना देशमुख भी हमारे से जुड़े हुए हैं और भी बहुत सारे जो पैगाम हमारे सामने हैं, ये है इम्तिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मोनू पराशर अलीपुर दिल्ली से जुड़े हुए हैं और इन्होंने हमें एक फरमाइश भेजी है। हम भी कोशिश में हैं कि आप सभी लोगों की फरमाइश पूरी करें। और बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिश्ता मोहम्मद नबीस, पलक लुबना और यश मंसूरी जुड़े हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और दिग्दर्शन गौड़ शोभापुर मेरठ कैंट से जुड़े हुए, कविता, राधा नामदेव, रानी झा, संजय ढींगिया, अनिल जैन, संदीप मक्कड़ और दर्शन भाई भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। और ख्याला से जुड़े हुए हैं राजेश कुमार, मनीष कुमार, उमेश कुमार, विष्णु गार्डन से भी जुड़े हुए हैं ये लोग, सोनित कुमार भी हैं इनके साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो आप तक आपका वो नगमा पहुंचा देते हैं, रफी साहब की आवाज में, मखमली आवाज है इनकी और फिल्म है महुआ आप सबके लिए।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
4: हर

जी हाँ, आपने ट्यून किया आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। मैं हूं आपके साथ शिव प्रकाश और आप सुन रहे हैं मन भावन। आपके नगमे, आपकी फरमाइशें हम शामिल कर रहे हैं अपने इस कार्यक्रम में। और हमारा जो नंबर है व्हाट्सएप का वो है 9868686853 और हमारा जो ईमेल का पता है वो है fmgoldaardelhi@gmail.com। आपके बहुत सारे पैगाम हमारे सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर हैं और एक पैगाम हमारे सामने जो है, जो हमने इनकी पसंद का गाना भी ले लिया है, ये है मजनू का टीला दिल्ली से। कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक ये जुड़े हुए हैं। इन्होंने शबनम फिल्म का जो गाना सुनना चाहा है वो हमने ले लिया है। और हमारे पास बिसाऊ राजस्थान से दिनेश राज कुमार, विजय कुमार और पंकज का ये संदेश आया हुआ है। इन्होंने फरमाइश तो नहीं भेजी मगर इनका संदेश जरूर हमारे पास था। धनौरा तेली वाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मोहम्मद यूनुस खत्री और सादिक खत्री, अयूब खत्री और यूसुफ खत्री भी जुड़े हुए हैं। चीपा कॉलोनी खांडवा से आप लोग जुड़े हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले और जीविका दले भी जुड़े हुए हैं। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पास मेल आई हुई है विष्णु गार्डन दिल्ली से, ये जुड़े हुए हैं नईम खान, अकरम, निसार, सारुन भाई, तमाम लोग जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रकाश बोरगांवकर सूर्यवाड़ी औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से जुड़े हुए हैं, साथ इनके हैं सुषमा बोरगांवकर, प्रांजलि, सोहम, सदा नंद, विराज, स्वीट अंशुमन, बेबी ओवी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही ये लिखते हैं जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी रूपेश जी। और अनिल मोहन का भी हमारे पास पैगाम आया हुआ है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही और भी कुछ पैगाम है लेकिन पहले नगमा रफी साहब की आवाज में आप सबके लिए।

0: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
4: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, आप सुन रहे हैं मनभावन। और अगला जो नगमा हम ले लिया है हमने वो है नाइट इन लंदन का। जी हाँ, बहुत ही प्यारा ये नगमा है और इसके लिए भी हमारे पास बहुत सारी फरमाइशें हैं। मोहम्मद रफी साहब की आवाज में है। मॉडल टाउन करनाल से हमारे पास पंकज शर्मा जी का ये पैगाम आया है, उनके साथ सुधीर नूतन, किरण ठाकुर, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, जग्गी दुआ, प्रेमलता दुआ भी शामिल हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और साथ ही हमारे पास एक पैगाम आया हुआ है मोताला बाजार से, सोहेल शेख, शेख वजीर, शेख शगीर और बबलू ठेकेदार भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरमीत सिंह मीता जुड़े हुए हैं साउथ एक्सटेंशन से, बहुत इनको कार्यक्रम पसंद आ रहा है और हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग जुड़ते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे पैगाम हैं, उनमें गणेशवाड़ी कोल्हापुर से संभाजी सुतार, चेतन सुतार, सारिका सुतार भी जुड़े हुए हैं। इन्होंने भी एक फरमाइश भेजी है, जरूर हम कोशिश करेंगे आप लोगों की फरमाइश आप तक जरूर पहुंचाना चाहेंगे। भवानीगढ़ संगरूर पंजाब से परमिंदर सिंह रंधावा, लखनपाल रंधावा और हरप्रीत कौर भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और साथ ही हमारे पास दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा का रिंगणी छत्तीसगढ़ से भी ये पैगाम आया हुआ है। और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं तो हम उनके पैगाम शामिल करना जरूर चाहेंगे। हमारे पास रागिनी तिवारी का भी छत्तीसगढ़ से ये पैगाम आया हुआ है और इन्होंने भी एक फरमाइश भेजी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार और रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल और खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा जी, इन तमाम लोगों ने हमें संदेश भेजा है। और उत्तम नगर से जॉन सीना, बी आर टेलर, सुमन, सरिता भी जुड़े हुए हैं और इन्होंने भी एक फरमाइश भेजी है, जरूर हम कोशिश करेंगे। और गौरी शंकर जी जुड़े हुए हैं नांगलोई से और इनकी भी एक फरमाइश है, जरूर कोशिश होगी। और भी बहुत सारे पैगाम, अलीगढ़ से हमारे पास सलीम अख्तर, रेशमा बेगम का भी पैगाम आया हुआ है। चलिए, तो नाइट इन लंदन का ये बहुत ही प्यारा सा नगमा रफी साहब की आवाज में आप सबके लिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड पर।

0: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
1: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
2: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
1: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
2: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
4: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और आप सुन रहे हैं मन भावन। संदेश आया है, मेरा नाम स्वरूप आनंद सरजाल, जोड़ा पिपाई, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ से। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये कहते हैं कि इनका परिवार और इनके दोस्त सभी लोग एक गाना सुनना चाहते हैं और वो गाना है फिल्म धरती कहे पुकार के से। ये गाना हमने ले लिया है आपकी फरमाइश पे और मुकेश जी की आवाज है, गाना भी अच्छा है और कुछ और भी संदेश हम शामिल करना चाहेंगे। और हमारे पास सरोज बंसल और अनूप कौर का ये पैगाम आया हुआ है, गुरुग्राम से आप पैगाम भेजते हैं, आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही आप अपना प्यार हमारे चैनल पे बनाए रखें। शमशुल कमर राही गंज डुंडवाड़ा से जुड़े हुए हैं, साहिन फातिमा अनु खान, अदनान खान, फैजान खान भी जुड़े हुए हैं और ख्याला से उमेश कुमार, दिनेश कुमार, अनुज कुमार और सोनित कुमार भी जुड़े हुए हैं। और साथ ही हमारे पास कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, इस्लाम नगर से मुजफ्फर अली खान भी जुड़े हुए हैं और नवसाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, निवृत्ति क्षीर सागर, संजय चौहान भी जुड़े हुए हैं। और जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो भी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, अशफाक, अफरीन कौसर, अल्ताफ भी जुड़े हुए हैं, नीलोफर फातिमा भी जुड़ी हुई हैं और नसरीन खान, वसीम खान और मुबीना खान तलवार गली खांडवा मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों के बहुत सारे पैगाम और भी हमारे पास हैं। हरजिंदर सिंह भाटिया जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं, इनके साथ एंजल भाटिया, पप्पी भाटिया और सोनू भाटिया भी जुड़े हुए हैं। और साथ ही हमारे पास मनाली हिमाचल से हर्ष, विनय, विनीत, रोजस भाई, चंडीगढ़ से शेफाली, शेफी, डेविस, बिमला, सतीश अनेजा भी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और हमारे पास सुरेश नारंग जी का भी एक संदेश आया हुआ है, इनके साथ आशा नारंग भी हैं, सहारनपुर से जुड़े हुए हैं। चलिए तो अब हम चलना चाहेंगे और चलते चलते ये नगमा जो फिल्म धरती कहे पुकार के से है और उसमें जो स्वर है वो मुकेश जी का है और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आप अपना ख्याल रखें इस मौसम में, अपनों का भी ख्याल रखें, बने रहें आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। नमस्कार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी का गांतो केंद्र है। मैं हूँ आपकी मेजबान कविता शर्मा और अभी आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सॉरी गाथा। हर रोज की तरह आज भी हम आपको मनोरंजन करने के लिए उपस्थित हुए हैं और आज का विषय है प्रदूषण, इंक्लूडिंग ई वेस्ट। ये देखने और सुनने में एक सामान्य विषय लगता है, लेकिन ये एक ऐसे संकट है जो धरती को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। हवा, पानी, मिट्टी में घुलता यह जहर हमारी सेहत और पर्यावरण को तबाह कर रहा है। लेकिन आज के इस डिजिटल युग में इस पारंपरिक प्रदूषण के साथ साथ नया और बेहद खतरनाक विलेन जुड़ गया है, जिसे हम ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक कचरा कहते हैं। बातें आगे होती रहेंगी, अब इसी के साथ सुनते हैं फिल्म हम दिल दे चुके सनम का ये गीत, जिसे आवाज सजाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने, संगीतकार है इजमाल दरबार। चलिए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों अभी आपने सुना फिल्म हम दिल दे चुके सनम का गीत। आजकल ई वेस्ट का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। जब हमारे पुराने मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, चार्जर, कंप्यूटर इत्यादि खराब हो जाते हैं तो हम उन्हें कचरे में फेंक देते हैं। यही ई वेस्ट है। ये कोई साधारण कचरा नहीं है। इन गैजेट्स में खतरनाक केमिकल होते हैं जो मिट्टी और पानी में मिलने के बाद उन्हें जहरीला कर देते हैं और हम उसी पानी और मिट्टी का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण हमें कैंसर, दिमागी बीमारी, किडनी फेलियर जैसे जानलेवा बीमारियों ने घिरा हुआ है। दोस्तों हम तकनीकी का इस्तेमाल बंद नहीं कर सकते, लेकिन इसके कचरे को सही तरीके से संभालना हमारे हाथ में है। हमें RRR का नियम अपनाना होगा, यानी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। आप लोग फिर एक बार सुनिए, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। बातों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। अभी सुनते हैं फिल्म चित्तौर का यह गीत, यशुदास की आवाज में, जिसे संगीत दिया है रविन्द्र जैन ने। और इसमें हमें गांव के बारे में वर्णन मिलता है जो कि प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों अभी आपने सुना फिल्म चीत चोर का गीत। दोस्तों हमें रिड्यूस यानी कम करना है। जो सामान जरूरत की है वही खरीदे, शौक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ना खरीदे। रीयूज दोबारा इस्तेमाल, अगर उपकरण को ठीक करके उसे रिपेयर करके प्रयोग करेंगे तो ई वेस्ट को कम कर सकते हैं। ई वेस्ट को इधर उधर फेंकने के बजाय रिसाइकल करते हैं, वहां करने के लिए देंगे तो ई वेस्ट को हम कम कर सकते हैं। दोस्तों प्रगति के दौर में हमें ये नहीं भूलना है कि प्रकृति नहीं बचेगी तो हमारा अस्तित्व भी नहीं बचेगा। ई वेस्ट को कम करेंगे तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। इसलिए आज हम सब लोग यहां से प्रण करते हैं कि हम अपने ई वेस्ट को कम करेंगे। इसी के साथ सुनते हैं फिल्म बाजीगर का गीत विनोद कुमार राठौड़ और अलका याग्निक की आवाज में।

दोस्तों अभी आपने सुना फिल्म बाजीगर का गीत। ईवेस्ट ही नहीं और भी कई कारणों से आज हमारी धरती संकट में है। जितना हो सके सिंगल यूज प्लास्टिक को छोड़कर रिसाइकलिंग को अपनी आदत बनानी है। पेट्रोल डीजल की जगह सोलर और विंड एनर्जी का प्रयोग करना चाहिए। सरकार तो अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है और हमें भी अपनी ओर से जागरूक बनना है। आजकल लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट बहुत खरीदते हैं। जितने भी ऑनलाइन सामान बेचने वाली कंपनी है जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नायका, मिंत्रा, मीशो, उन्हें प्लास्टिक की जगह पेपर का प्रयोग करना है ताकि प्लास्टिक को कंट्रोल में किया जा सके। ऐसे छोटे छोटे कदम से ही बड़ा बदलाव संभव है। तो दोस्तों हम सबको एकजुट होकर इन विषय पर काम करना है। अब बातों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। अभी सुनते हैं फिल्म बरसात की एक रात से लता मंगेशकर की आवाज से सजी हुई ये गीत, जिसे संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

दोस्तों, अभी आपने सुना फिल्म बरसात की एक रात का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। हम पहाड़ों में रहने वालों को और भी ज्यादा सजग रहना है, क्योंकि यहाँ ज्यादा प्रदूषण होने से क्लाइमेट चेंज हो जाता है और बेमौसम बरसात होने लगती है, उससे भूस्खलन की समस्या बढ़ जाती है। और दूसरी ओर बात करें तो यहाँ 80% से ज्यादा लोग टूरिज्म पर निर्भर है। अगर पॉल्यूशन ज्यादा होगा तो प्राकृतिक सुंदरता भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए हम सिक्किम वासियों से गुजारिश करते हैं, जितना हो सके प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। दोस्तों, आजकल 2-3 फोन लेने का जमाना आ गया है, लेकिन वो कितना नुकसान देता है वो हम भूल जाते हैं। आप लोगों से अनुरोध है, गैजेट्स का कम से कम प्रयोग करें और हो सके तो विलेज लाइफ प्रीफर करें। इसी के साथ सुनते हैं पहाड़ पर आधारित गीत। इस गीत को सुनाने का उद्देश्य यह है कि पहाड़ खूबसूरत होते हैं, लेकिन हमें उनकी रक्षा करनी होगी, नहीं तो पहाड़ की खूबसूरती धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। तो चलिए सुनते हैं सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की आवाज से सजी हुई यह गीत फिल्म राम तेरी गंगा मैली से।

0: Tatasa lungtiganga tole pangin minto denjo pelerim sembona di juhe po in, taring kilerim na chambo in, di gyaple, gyalsa dilile hindi kele nechil sembona.
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में फ्रांस के कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
2: सेंटकोमा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडॉल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। विवाटेक सम्मेलन के इस संस्करण में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मंडप है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। श्री शाह ने बताया कि इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृहमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री इस समय विवाटेक सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
3: For the 10th edition of VivaTech. This is Europe's biggest technology event. I congratulate President Macron and the organizers for the success of VivaTech. Friends, 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement.
1: सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है।
4: पतन रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही है। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले तीन दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी से लदा मालवाहक जहाज दिशा के कल सुबह गुजरात के

0: दाहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने अब तक 3,639 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी की सराहना की है। पिछले 3 दिन में 47 नाविक वापस आए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उपराष्ट्रपति और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त परिसर अभियान के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की है। विश्वविद्यालय के 53,000 से अधिक छात्रों ने देश को नशा मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा ली है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक में आज लगातार 5वें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हामी आकाशवाणी गान्तोकको बेलुकी प्रसारण सेवाबाट बोलिरहेका छौं। श्रोताहरूले हाम्रो यस प्रसारणलाई एफएम कञ्चनजंघा 103 मेगाहर्ज तथा न्यूज अन एयर मोबाइल एप मार्फत पनि सुनिरहनु भएको छ। श्रोता अब प्रस्तुत छ दैनिक ग्रामीण कार्यक्रम।

0: सम्बन्धित सामान्य जानकारी स्थानीय मौसम विज्ञान विभागबाट प्राप्त जानकारी अनुसार गान्तोक तथा वरपरका क्षेत्रको अधिकतम तापक्रम 23.2 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस एवं वर्षा 34.6 मिलिमिटर रेकर्ड गरियो। आगामी 24 घण्टाको मौसम सम्बन्धित पूर्वानुमान अनुसार आकाशमा बादल छाउनका साथै एक दुई ठाउँहरूमा हल्का वर्षा हुने सम्भावना रहेको सोही विभागले जनाएको छ।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: पीएलआई है ना?
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं पीएलआई पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
0: श्रोता यो सुन्नुहोस् लाइभ फोन इन कार्यक्रम सम्बन्धी एक सूचना। भोलि तारीक 19 जुन 2026 शुक्रबार साँझ 6:05 प्रसार गरिने ग्रामीण कार्यक्रममा हामी लिएर आउनेछौ अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको सन्दर्भमा लाइभ फोन इन कार्यक्रम। विषय रहनेछ योग गरौं निरोग बनाऊ। यस योग विषयमाथि अधिक जानकारी दिन भनी हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित रहनुहुनेछ योग प्रशिक्षक श्री राम प्रसाद पौडेल र यस विषयमाथि कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा भए हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 03592201171 अथवा 03592201171 सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। दिन अनि समय पुनः सुन्नुहोला। आगामी भोलि 19 जुन 2026 शुक्रबार साँझ 6:05 अनि फोन नम्बर रहेको छ 03592201171। पुनः सुन्नुहोला 03592201171। सूचना पूरा भयो।

0: प्रधानमन्त्री विकसित भारत रोजगार योजना पेडिक सा थनलत सा जिंगलत का लयुगबु संसा कर्थाक गेंथो उनलोकल दिल्ली आल का विज्ञान भवन का छंगजत कर्थाक नरेंद्र मोदी सा छलुत का मिनर पुबार सा पीएम VBRY थोपे दिग्नौ शिबुनी मो थोपेयारे का रेन मोदी नन बेनिफिशियरी संग्रेम दंथक नेछागियो फुली करोल कम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लोम्यु रिच शिबु निबुंग मो थोपेयारे का लयुगबु उन आदेर आलेम आदंसा बोंछ ब्रंछ कुर्थक डॉक्टर मानसुक मंदविदन उन लयुगबु संसा ल्यांगजुंग कुर्थक शुबा करण लाजे उन बोंछ बोंची आरिसा गानबु गेंदक संगनला आका लिनौ शिबु निबुंग मो सरंग EPFO गंगटोकनन आरि सतनका चरफ्लटुजुमका दिग्लुंग दिगथोमो रिजनल PF कमिश्नर केसांग नामथाक तेंजिंगनन सुंथोबा रेंजोंग नुनला गंगटोक सारेंजोंग मानिपल पुंजुंथोसा सुतलोतका आका लेनोंशिबु निमो रेंजोंग जुं ला लयुगबु कुर्थक बिमहांग लिम्बु नन्थोपे आरेका गुलुनुंग सल्युका आका लेनोंशिबु निबुंथोमो आयुष बोंची सा कोशकबु एके गाटानी सा गुणलत का नी थोबु प्रंगछक नन सरंग रेंजों सा जुंगपुन ओम प्रकाश माथुर रेम लोकपावन का चुंबुंगमो चुमस तचत अरे का प्रंगछक नन जुंगपुन रेम नाम कति नेथप इंटरनेशनल योगा सक्यम सा सुलन का गुलुन नुंसा ल्यू का आका लिनोंग बो यों अगक यक फुबुंग थोमो योगा सुंगलो सक्यम सा थोपे रेम लबो अरे सच नेथेप काचों रिच पाक का दिग्नौ शिबु तेंतेन हुंतोबु निमो जुंगपनन आकक्रेम ल्यु लंगथोपे अरे नला अरुमचेन ल्यु का थनखत तका यंग रिमचिंग फुबुंगमो चुमछ तारिका आयुष बोंची सगार नोंग सुचित्र रसैले उनकमदुंग गेंदोक सोंगला निबुंग थोमो आदिर चोंगपन सोंग उन अफुबी सा बोंचोक पन दिवास कपिल छेत्री उन सुलभ राजगुरुंग नंसरोंग लोक बावन का रेंजों सर जुंगपुन ओम प्रकाश माथुर देव चुमबुंगमो चुमसुपेयुक अरेका रेनसोंग नन जुंगपुन रेम तुदोसा स्टार्टअप अपोपी तनका यमको बिबुंगमो अपोपी छोंगयुक अरे नन एआई कैरियर सा प्लेटफॉर्म जिंग सोंग उन ल्यांगमु सगुन ल्यांग पोंका पेडिक अरे लुंगबो छोंग अरे हुयु समिक नो निथोमो रेनसोंग नन जुंगपुन रेमको बि लुंगसुंग थोबा पेडिक अरे नन जर्मनी लम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लियथोबु निबुंगमो उन अफुपी चुग्यम चुक्लात कंसुर सा नहानमो एआई पावर केयर करियर इकोसिस्टम गुम सिरेनन गुन लोयु गाडबु सोंग रेम तुदो सकुमोर नांगसिंग अथेनपोंग थुप संगुम जुंगपन नन पेडिक अरे रेम लियलंग अदिर छोंगपन सोंग रेम क्योंटेट मातबुंगमो रेंजोंसा लोकसभा ओंगदु इंद्रा हंसुबानन सरोंग दिल्ली अलसा कर्तव्य बावन का ब्रंछ डिफेंस कर्थक राजनाथ सिंह रेम चुमबुंगमो रेंजों ल्यांगजुंग दीप का दीप्तम निम्बु गोंगछुमपे युक्तन का ग्लीला रिंगपेट मातबुंगमो चुमचुत थोपे तचुत का रेंसुबानन चुग्योम रेंजोंसा दुक्तोंग बोंगमित पोंगनोंग का मुंगलेम उनतुंगबु लोमल्यांग पोंग का दुक्तोंग तुन का रिंगफ्लट थोबुंगमो रेंजों सा अर्पना गुरुंगनन आलोबादो पंजाब का सुंगवांबो कति पुंगोता फेडरेशन कप का कौन छिलो उन्जेर छिलो गे थोबो निमो रेन्यू नन लबो अरे सा लाटबु छ सामथेत नन लियन का नमकम लबो सा छ फुली संगथेत प्रो सा थिम्पु का सुंगनोंग शिबु कति तरोक थप साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग उन फिजिक अलिम असुंग चैंपियनशिप 2026 का सुकिम नोरबो भुटिया उनसीता विश्वकर्मा देव का ग्यकर सतन का लिमनोंग शिबु तन का अथन थुप थुबु निबुंग थुमो बॉडी बिल्डर एसोसिएशन ऑफ सिक्किम सगा नोंगपोन पेमा डब्ल्यू डी बोटिया उन तारजुम अरे सातो ओंगधु सोंगनुन सुचर टुजुम का अरिंग अरे सरिंग फ्लट मातबुंगमो अर्पना गुरुंगसा तन का अरे अलियम नहानमु मिनोरलत बेग का अलियम काटगुम रेन्यूनन तुदो रोथ अरे का थनखत बा तुदो सा साक्चुल फुतुबु निबुंगमो
1: First of all, you made it like a proud moment too that I've been selected to represent India at the South Asian Championship. Right?

0: आई वुड लाइक टू थ्याङ्क मेरो कोच, मेरो फ्यामिली एसोसिएसनलाई जसले मलाई यहाँसम्म पुर्याउनु भएको छ. मेरो प्रिपरेसन हेज अलरेडी स्टार्टेड, है, फुल स्पिडमा जाँदैछु एन्ड होपफुली आई क्यान ब्याक सम मेडल्स फर द स्टेट एन्ड द कन्ट्री.
1: नाम अरेसा सुङबम पुन समुख सप्त अछोक सल्युक सरौ नाम्ची देसी ल्याङथोक नाम्ची ल्याङदेसा ल्याङदेपुन अनुपातामलिङ नसामुख भारत अभियान स इ प्लेच लुङजेङ वुङमो सरौस सुटलुन अबिदो छोङवुङमो. दि लुङठी खा गातुइन थारिङ कि नेचुल सोनाम चुकी चाले सेम्बोना. प्रधानमन्त्री विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY कि लेगडुप जुङवी ताकना मिनिस्ट्री अफ लेबर थाङ इम्प्लोयमेन्ट गी थोराङ दिल्ली साप विज्ञान भवनना सिक्योङ लिम्पु नरेन्द्र मोदी चम्बो नासे इन दि लेखो लेङ्गे कि PMVBRY कि लेरिम गचुक्से इन लेरिम दिना मोदी छुकि तिरु नितो जिज्ञासाया खेपेन थपमी चुलो डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर गिथोले फिन्से इन लेरिम दिना लेबर थाङ इम्प्लोयमेन्ट युथ अफेयर्स थाङ चिम कि चिछो लम्बु डाक्टर मनसुख मन्धाविया थाङ लेबर एन्ड इम्प्लोयमेन्ट गि नदि लम्बु शोभा करण लाजे दिले मिनिस्ट्री अफ लेबर एन्ड इम्प्लोयमेन्ट गि गोजे बम्बु चुयाङ लेरिम ना चाबो नासिन. आयुष लेला गि एडभाइजर ए के घाटानी कि थारिङ लोक भवनना डेजोङ कि सिक्योङ ओम प्रकाश माथुर छुलो फेपो नाम्बोबे खुइसाब शेजम ना सिक्योङ छोलो 12th इन्टरनेसनल डे अफ योगा ना चिफ गेस्ट भूप नाम्बोबे. इन्टरनेसनल डे अफ योगा कि लेरिम दि ओङबी जुन कि छे निशु चाची गाँतो कि रिच पाक ना फ्यासी इन सिक्योङ छु कि थुजी छि सुङझिन भो यो दिलो खेलेन फ्याव थाङ लेरिम लेम फ्याति म्यौ छुप इन लाप्ती टासी दिलेक फिव नादु नाजन खेले पो थाङ आफुपी कि न्यामडेल जिचुक पो दिवास कपिल छेत्री थाङ सुलभ राज गुरुङ कि थारिङ लोक भवन ना डेजुङ कि सिक्योङ ओम प्रकाश माथुर न्याम्ची खुइसाब कि सेजम ना फेपो नाम्बोबे. सेजम क्यापे काप्लो खोङ कि सिक्योङ छोलो खोराङ कि स्टार्टअप आफुफी कि कर्लो दर्दुई फ्याति सेपोबे. दिनि योङसु जोपी एआई पावर लेरिम कि जितक थाङ खोङ लेङ्गे कि नोसाम्चु याखाब कि साने जेन्चु नाङले फा छोङदेल याचे ताङवि छानाङचु यपो इन खोङ लेङ्गे कि सिक्योङ छोलो प्रोजेक्ट दि थनलो फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट ग्यालखाब जर्मनी चाले थपो इन्से याङ सेदु. दिले छाङसार नाङले आफुफी दि गथाङपु एआई पावर कि यु केखाम रिङलुक चिक इन डेजोङ कि लोकसभा कि एमपी इन्द्राहाङ सुब्बाछु कि थारिङ दिल्ली सापोना युनियन डिफेन्स कि लम्पु राजनाथ सिंह न्याम्चिक कर्तव्य भवन ना फेपो नादि डेजोङ नादि थप्छु कि खेचेङ कि कर्लो ख्युदुर च्यापो नाम्बोबे. सेजम च्यापे काप्लो सुब्बाछु कि छाङ डेजोङ ना लाम गि काङ्गाल चुइ कर्लो थाङ जागर कि साछाम गि कर्लो याङ सेपो नादु. खो लेङ्गे कि डिफेन्स लम्पुलो लाम गि काङ्गाल यपो दिचुलो लोकचो फ्यानासे याङ सेपो नादु. डेजोङ कि आर्पना गुरुङ पन्जाब ना थनबी 15 फेडरेसन कपना से गि तकमा थाङ यु कि तकमा गेबोबे. खो लेङ्गे जुन कि छि सुमचु ले जुलाई कि छि जिथु डुक कि थिम्पु ना थनराब युपी 16 फ्लो एसिया इ बडी बिल्डिङ थाङ फिजिक स्पोर्ट्स च्याम्पियनसिप यितु निशु चाटु ना सुखिम नर्बु भुटिया थाङ सीता विश्वकर्मा खो लेङ्गे जागर लो रिप्रेजेन्ट फ्यासे ना थार्खे बोबे. डेजोङ कि जु जखेन छकपो याङना बडी बिल्डर्स एसोसिएसन अफ सिक्किम कि चिख्याप डुङछे पेमा डब्लुडी भुटिया थाङ जेन जिङग्योङ थुमी चु कि सेजम याङना प्रेस कन्फरेन्स ना खो लेङ्गे चुइ मिङ तम्बो नाबोबे. आर्पना गुरुङ कि थनलो थाङपो ग्यालचि डेन्दुर चिक इन मुकि सेम गाजिन चिक चिनि सेपो नाबोबे.
0: First of all, mero lagi proud moment ho that I've been selected to represent India at the South Asian Championship. I would like to thank mero coach, mero family, association lai jasle malai yaha samma puryaunu bhako cha. My preparation has already started. Full speed ma jandaichu and hopefully I can back some

0: minerals for the state and the country.
1: Tenji yebi nasha mukt sapta sapta nito nishu chadu ki part chi na tharing namchi jongkha administrative center DAC na jongpen anupa tamling gi nasha mukt bharat abhiyan ki e pledge phyabobe lerim di dina DAC namchi ki goje thamche chabo nambobe tuiten dina de jongpen gi anti drug ki pledge thang yung gi goje dile mimang chu lo drug free chicho labdi jingkyong phyabobe tharing ki nichul dikhar chu boin thuchi shi
2: हामी आकाशवाणी गान्तोकको बेलुकी प्रसारण सेवाबाट बोलिरहेका छौं। श्रोताहरूले हाम्रो यस प्रसारणलाई एफएम कञ्चनजंघा 103 मेगाहर्ज तथा न्यूज अन एयर मोबाइल एप मार्फत पनि सुनिरहनु भएको छ।
3: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
4: PLI है ना?
5: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
2: श्रोता अब प्रस्तुत छ अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको सन्दर्भमा हिन्दीमा एक वार्ता। विषय छ योग और जिम। वार्ताकार हुनुहुन्छ डाक्टर पवन कुमार रोय।
6: योग केवल एक व्यायाम नहीं बल्कि यह शरीर मन और आत्मा को जोड़ने वाली एक प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति है। संस्कृत शब्द युक्त से उत्पन्न योग का अर्थ एकजुट होना या मिलन है, जो व्यक्ति के भीतर संतुलन और बाहरी दुनिया के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। योग शरीर मन और आत्मा को संतुलित करता है। योग अपनाकर हम स्वस्थ शांत और खुशहाल जीवन जी सकते हैं और तनाव से कोसों दूर रह सकते हैं। योग का इतिहास अत्यंत प्राचीन एवं विकासशील है, जो लगभग 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात लगभग 2500 से 1500 ईसा पूर्व से जुड़ा माना जाता है। हालांकि इसकी उत्पत्ति पर अलग अलग मत है, लेकिन यह स्पष्ट है कि यह सदियों में मानसिक साधना से वैश्विक शारीरिक अभ्यास के रूप में विकसित हुआ है। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में योग को पश्चिम से परिचित कराया। तिरुमलई कृष्णामाचार्य को आधुनिक योग का जनक माना जाता है। उन्होंने जिम्नास्टिक और कुश्ती के तत्वों को मिलाकर सूर्य नमस्कार और विन्यास योग को विकसित किया। उनके शिष्य VKS आयंकर, पट्टा भी जोयश और इंदिरा देवी ने योग को पूरी दुनिया में फैलाया। योग एक स्थिर परंपरा नहीं रही है, यह एक ध्यान पद्धति के रूप में शुरू हुआ, मध्यकाल में शारीरिक आसनों के साथ समृद्ध हुआ और 20वीं सदी में वैश्विक फिटनेस और चिकित्सा पद्धति के रूप में उभरा। आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखना एक चुनौती बन गया है। इसके लिए दो लोकप्रिय माध्यम है, जिम अर्थात व्यायामशाला और योगासन। दोनों के अपने अपने लाभ हैं, लेकिन इनकी प्रकृति, उद्देश्य और प्रभाव अलग अलग होते हैं। जिम एक पश्चिमी अवधारणा है जो मुख्यतः शारीरिक शक्ति, मांसपेशियों के विकास और सहन शक्ति पर केंद्रित है, जबकि योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जो शरीर मन और आत्मा के समग्र विकास पर केंद्रित है। योग और जिम दोनों का अपना महत्व है। यदि हमारा लक्ष्य मांसपेशियां बनाना और तेजी से वजन कम करना है तो जिम बेहतर विकल्प है, लेकिन यदि दीर्घकालिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति, लचीलापन और आंतरिक संतुलन चाहते हैं तो योगासन अधिक उपयुक्त है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। और इसके लिए

जिम और योग दोनों ही प्रभावी माध्यम है। लोग अक्सर फिटनेस के लिए जिम और योग के बीच भ्रमित रहते हैं। हालांकि दोनों के अपने लाभ हैं, लेकिन इनके उद्देश्यों और शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों में स्पष्ट अंतर है। जैसे कि जिम का मुख्य ध्यान अक्सर बॉडी बनाने और मांसपेशियों का तीव्र विकास और मजबूती पर होता है, जबकि योग का लक्ष्य शरीर को स्वस्थ, निरोगी और युवा बनाए रखना है। जिम में भारी उपकरणों के साथ हार्ड एक्सरसाइज की जाती है, जबकि योग में बिना किसी उपकरण के सॉफ्ट योगासन किए जाते हैं। जिम वर्कआउट के बाद व्यक्ति अक्सर थकान महसूस करता है, जबकि योग के सत्र के बाद शरीर और मन पहले से अधिक तरोताजा और स्फूर्तिवान महसूस होता है। जिम से मांसपेशियां और हड्डियां सख्त हो सकती है, लेकिन योग शरीर को अत्यधिक लचीला और कोमल बनाता है। जिम वजन घटाने में सहायक है, शरीर सुडौल और आकर्षक बनाता है, जबकि योग से आध्यात्मिक विकास होता है, तनाव और चिंता में कमी आती है। जिम महंगा है, जबकि योग कम लागत किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि जिम और योग को एक साथ अपनाने से फिटनेस के स्तर में जबरदस्त सुधार हो सकता है। जिम वर्कआउट के दौरान मांसपेशियों के ऊतक अर्थात टिश्यू टूटते हैं और योग उनकी रिकवरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह शरीर के जोड़ों को स्थिरता प्रदान करता है और जिम के दौरान होने वाली चोटों के जोखिम को कम करता है। योग का एक महत्वपूर्ण अंग प्राणायाम अर्थात श्वास नियंत्रण है। वैज्ञानिक शोध दर्शाते हैं कि 12 हफ्तों तक नियमित प्राणायाम करने से हृदय और श्वसन क्षमता में उल्लेखनीय सुधार होता है। यह रक्तचाप अर्थात ब्लड प्रेशर और हृदय गति को कम करने में सहायक है। प्राणायाम फेफड़ों की कार्य क्षमता और ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। यह शरीर में सहन शक्ति को भी बढ़ाता है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में लिखा है कि स्थिरम सुखम आसनम, अर्थात आसन वह है जो स्थिर और सुखद हो। इसी तरह से स्वामी विवेकानंद ने कहा था, योग आपको शरीर के रहस्य और फिर मन के रहस्य को जानने की कुंजी देता है। श्री श्री रविशंकर के शब्दों में कहा जाए तो योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जो तनाव को घटाती है और शांति को बढ़ाती है। आधुनिक समय में योग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के प्रबंधन में एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। मधुमेह, वज्रासन और धनुरासन जैसे आसन इंसुलिन संवेदनशीलता को सुधारते हैं और ब्लड शुगर को नियंत्रित करते हैं। सूर्य नमस्कार और त्रिकोणासन मेटाबॉलिज्म को तेज कर वजन घटाने में मदद करते हैं। उच्च रक्तचाप, श्वसन और भ्रामरी प्राणायाम तंत्रिका तंत्र को शांत कर रक्तचाप को सामान्य रखते हैं। योग हार्मोनल संतुलन बनाए रखने और महिलाओं में प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार करने में प्रभावी है। योग न केवल शारीरिक फिटनेस बल्कि मानसिक शांति के लिए भी अनिवार्य है। यह शरीर में तनाव पैदा करने वाले हार्मोन कोर्टिसोल के

0: स्तर को कम करता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है। नियमित अभ्यास से चिंता और अवसाद अर्थात डिप्रेशन के लक्षणों में 40% तक की कमी देखी गई है। वर्तमान में लोग न्यूरो वेलनेस के लिए योग की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे बर्नआउट और मानसिक थकान को प्रबंधित किया जा सके। इस वर्ष 2026 की थीम योग फॉर वेलनेस विजडम एंड वर्ल्ड पीस है, अर्थात कल्याण ज्ञान और विश्व शांति के लिए योग रखा गया है। योग के फायदे को देखकर पूरे विश्व ने इसे दिल से स्वीकार किया है। भारत के ऋषियों ने इस विज्ञान को गहन अभ्यास और चिंतन से विकसित किया था, इसीलिए हम लोग इसे नियमित दिनचर्या में शामिल करके सुखद जीवन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। योगी निरोगी और कर्मयोगी सफल जीवन के लिए उपयोगी।
1: श्रोताहरूले भर्खरै सुनिरहनु भएको थियो अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको सन्दर्भमा हिन्दीमा एक वार्ता। विषय थियो योग और जिम। वार्ताकार हुनुहुन्थ्यो डाक्टर पवन कुमार रोय। हामी आकाशवाणी गान्तोकको बेलुकी प्रसारण सेवाबाट बोलिरहेका छौं। श्रोताहरूले हाम्रो यस प्रसारणलाई एफएम कञ्चनजंघा 103 MHz पनि सुनिरहनु भएको छ। श्रोता अब प्रस्तुत छ हजुरहरूकै पत्रमा आधारित रहने रमाइलो सांगीतिक कार्यक्रम नेपाली अनुरोध संगीत। नेपाली अनुरोध संगीत कार्यक्रमलाई कुरेर बस्नुहुने हाम्रा तमाम संगीत प्रेमी श्रोताहरूमा हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन जनाउँदै कार्यक्रमको प्रथम प्रस्तुति हामी सुनाउन गइरहेछौं गायक कलाकार सुरेश कुमारको एकल आवाजमा। यस गीतको निम्ति हामीलाई पत्र पठाउने श्रोता हुनुहुन्छ लिन्दोकप्रु सिक्किमबाट नीलम शर्मा, लुइङ गान्तोकप्रु सिक्किमबाट दुर्गा शर्मा, रितु शर्मा, नाम्सी दक्षिण सिक्किमबाट ज्योति सुवेदी, मनिषा शर्मा, गीता शर्मा, जोरथाङ दक्षिण सिक्किमबाट दीपिका छेत्री, सिच्छे गान्तोकप्रु सिक्किमबाट हेमकुमारी छेत्री एवं भाजरा बालुवाखानी गान्तोकप्रु सिक्किमबाट पिन्चो अङ्गु भोटियाले पनि यो गीत सुन्न चाहनु भएको छ।

0: शुरूमा मुख्य समाचार प्रधानमन्त्रीद्वारा भिवाटेक 2026 शिखर सम्मेलनमा सम्बोधन राष्ट्रपतिको आजदेखि मध्यप्रदेश र ओडिशाको 5 दिने भ्रमण सरकारले पेट्रोल र डिजेलको पर्याप्त स्टक राखिएको दियो जानकारी संयुक्त राज्य अमेरिका र इरान बीच ऐतिहासिक समझदारी पत्र भयो लागू अनि फिफा विश्वकपमा आज चेकियाको दक्षिण अफ्रिकासँग अनि स्विजरल्याण्डको बोस्निया र हर्जगोविनासँग सामना पेरिसमा आयोजित भिवाटेक 2026 शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले डिजिटल भुक्तानी वित्तीय समावेशीकरण शिक्षा स्वास्थ्य सेवा र कृषि जस्ता क्षेत्रहरूमा भारतको द्रुत प्रविधि संचालित रूपान्तरणलाई प्रकाश पार्नुभयो श्री मोदीले भारतले अन्तरिक्ष प्रविधि र आणविक ऊर्जामा उपलब्धिहरू मार्फत मानव क्षमताको सीमा विस्तार गरिरहेको बताउनुभयो यसै गरी प्रधानमन्त्रीले आज पेरिसमा फ्रान्सेली उद्योगका अग्रणी नेताहरूसँग भेटघाट गर्नुभयो जसमा उत्पादन आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स दिगोपन र समुद्री पूर्वाधारमा केन्द्रित छलफलहरू भए बैठकहरूपछि आकाशवाणीसँग कुरा गर्दै शीर्ष कार्यकारीहरूले भारतमा बढ़दो अवसरहरूमाथि प्रकाश पार्नुका साथै देशसँग गहिरो संलग्नताको योजना घोषणा गरे एक रिपोर्ट
1: सेन्टकोमा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंच ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडॉल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है महेश सोबरे आकाशवाणी समाचार पेरिस फ्रांस
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूले आज मध्यप्रदेश र ओडिशाको 5 दिने भ्रमण शुरू गर्नुभएको छ आफ्नो भ्रमणको पहिलो दिन उनी प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयद्वारा आयोजित आध्यात्मिक जागरण मार्फत आदिवासी समुदायको सशक्तिकरण शीर्षकको कार्यक्रममा भाग लिन बेतुल आइपुग्नु भएको छ राष्ट्रपतिले भेलालाई सम्बोधन गर्दै आदिवासी समुदायलाई सशक्त बनाउने उद्देश्यले आयोजित सम्मेलन यस क्षेत्रका लागि मात्र नभई सम्पूर्ण देश र समाजका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो राष्ट्रपति भोलि दिउँसो ओडिशाको भ्रमणमा जानुहुनेछ उहाँ मयूरभंज जिल्लाको रैरंगपुरको भ्रमणको क्रममा एम्स भुवनेश्वरद्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविरमा भाग लिनुका साथै लाभार्थीहरू र डाक्टरहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्नुहुनेछ संवाददाताद्वारा एक रिपोर्ट
2: रैरंगपुर में राष्ट्रपति एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक हेल्थ कैंप का दौरा करेंगी वो एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलपूर्ति प्रोजेक्ट को भी देश के समर्पित करेगी जिससे कुसुमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव को फायदा होगा इस दौरान कई अहम सार्वजनिक बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया जाएगा इस दौरे के एक अहम बात यह है कि राष्ट्रपति रैरंगपुर में उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक भव्य सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होगी दोनों नेता कई विकास प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे प्रकाश दास आकाशवाणी समाचार भुवनेश्वर
0: गृहमन्त्री अमित शाहले आज नयाँ दिल्लीमा भारतका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका राजदूत सर्जियो गोरसँग भेट गर्नुभयो श्री गोरले सामाजिक सञ्जाल पोस्टमा दुई नेताले आतंकवाद विरूद्ध लड्न लागू पदार्थ र अवैध लागू औषधबाट नागरिकहरूलाई जोगाउन सीमा सुरक्षित गर्न र अपराधीहरूलाई न्यायको कटघरामा ल्याउने कुरा सुनिश्चित गर्न दुई देश बीचको सहकार्यलाई सुदृढ पार्ने विषयमा फलदायी छलफल भएको बताउनुभयो केन्द्र सरकारले आर्थिक वर्ष 2026-27 26,000 किलोमिटर भन्दा बढ़ी ग्रामीण सड़कहरू निर्माण गर्नेछ ग्रामीण विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना र सम्बन्धित ग्रामीण सम्पर्क पहलहरू अन्तर्गत ग्रामीण सड़कहरूको निर्माणको लागि 18,900 करोड़ रूपियाँ भन्दा बढ़ी छुट्याइएको छ ग्रामीण सड़क सम्पर्क परियोजनाहरूको प्रगति मूल्यांकन गर्न उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक

0: श्रोताहरूले सुनिरहनुभएको थियो सुर संसार कार्यक्रम अन्तर्गत बाँसुरीवादन पण्डित हरिप्रसाद चौरसियाद्वारा राग हंसध्वनि। हामी आकाशवाणी गान्तोकको बेलुकी प्रसारण सेवाबाट बोलिरहेका छौं। श्रोता, अब केही क्षणमा प्रस्तुत गर्नेछौ आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट समाचार सन्ध्या अन्तर्गत क्रमशः हिन्दी अनि अंग्रेजी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने ईरान और अमरीका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: द मैसेज आई शेयर देन एट विवाटेक 2021 वेयर कन्वेंशन फेल्स इनोवेशन कैन हेल्प। इंडिया हैज बीन गोइंग थ्रू अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी फ्रॉम क्रिएटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स। वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी एट अ मैसिव स्केल फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड मोर।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
1: AI must improve lives, widen access, drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
0: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
1: 2026 इज अ स्पेशल ईयर फॉर इंडिया एंड यूरोप। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर We concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
0: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
2: सेंटकोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडाल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपरे, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता

0: पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गुर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृहमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
2: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
3: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
1: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
4: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
1: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1,761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: नियुक्ता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉकेट टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायु सेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने वैश्विक शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गरिमा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 38,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी चेन्नई में पद्मश्री से अलंकृत डॉ आर श्रीधर को सम्मानित किया। डॉ मुरुगन ने कहा कि डॉ श्रीधर ने अपने करियर के दौरान रेडियो प्रोग्रामिंग में असाधारण नवाचार किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने भी डॉ श्रीधर को भारतीय प्रसारण में क्रांतिकारी व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना की। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मिजोरम की सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने आज राज्यसभा में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। पार्टी नेता के लालत लुआर गकीमा ने राज्य की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवेस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खारब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में कल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक बताया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुड्डा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says technology can lead to progress only when it's democratized. Highlights use of technology in India's rapid digital transformation at Viva Tech Summit in Paris. Prime Minister also holds discussions with leading French business leaders on investment opportunities and expansion plans in India. Education Minister Dharmendra Pradhan chairs high-level review meeting to assess preparations for NEET UG re-examination scheduled on Sunday. Iranian President Masoud Pezeshkian describes newly signed MOU between Iran and US as a historic document. Ukraine strikes a Moscow oil refinery for the second time within a week. And Meenakshi Hooda advances to quarterfinals of World Boxing.

0: Country White. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए रोजगार के नए अवसरों को गति देती प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
1: श्रोताओं, पिछले साल केंद्रीय कैबिनेट ने एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना को मंजूरी दी थी। देश में रोजगार बढ़ाने की दिशा में ये योजना महत्वपूर्ण योजना के तौर पर उभर कर सामने आई है। श्रम व रोजगार मंत्रालय ने ईपीएफओ के माध्यम से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की थी, जिसे लगभग 1 लाख रुपए के कुल बजट के परिव्यय से शुरू किया गया है। और इस योजना के तहत लक्ष्य रखा गया है कि देश भर में 2 साल के अंदर करीब 3.5 करोड़ रोजगार पैदा किए जाएं। अगर कहा जाए कि ये एक ऐसी योजना है

0: दिया है उनके उन नियोक्ताओं से भी हम कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तो आशुतोष जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं। किस तरह से आप देखते हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को, कि 2 वर्षों में 3.5 करोड़ रोजगार को पैदा करने का जो इस योजना के तहत लक्ष्य रखा गया है, कितनी महत्वाकांक्षी योजना है?
1: सच्चाई ये है, समाज में इसकी जरूरत थी कि सरकार की ओर से आप ऐसा कुछ करें कि इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इसके लिए आगे बढ़ें कि भाई हमें नौकरी देनी है लोगों को। तो उस दिशा में जब ये सरकार ने सोची और बजट में ही इसकी घोषणा हुई थी और उसके लिए फिर पूरी तैयारी हुई, कल पहली बार 2400 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी थी। ये पहली किस्त है क्योंकि अदरवाइज तो ये कुल बजट इसका करीब करीब 1 लाख करोड़ है, 99 लाख समथिंग कुछ इस तरीके से इसका है। तो वो चीजें पहली किस्त जा रही है। और आपने ये बात जो कही कि आप कुछ ऐसे लाभार्थियों से भी बात करेंगे और कंपनियों से भी बात करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए कि जो औपचारिक नौकरी पाने वाले जो युवा हैं उसके इसमें जो है 2 किस्तों में 15,000 रुपीज तक की कोई प्रोत्साहन राशि दी जाती है, वो दी जाएगी। और इससे जाहिर तौर पर कंपनियों को भी एक प्रोत्साहन मिलता है कि चलिए एक असिस्टेंट सरकार की ओर से मिला हम लें, उनको भी जरूरत है। देखिए आज के दिन क्या है, अब जब फिर से वर्ल्ड ओपन अप होने वाला है, बहुत अच्छी बात हो गई कि वेस्ट एशिया क्राइसिस भी खत्म हो गया, अभी एक बार भी बहुत तेजी से काम भी बढ़ेंगे, कंपनियों के लिए भी बहुत काम आने वाला है हर क्षेत्र में, उसमें सरकार की ओर से ये मदद भी जब जाएगी तो और एक अच्छा माहौल बनेगा
0: निश्चित तौर पर। और इससे पहले कि हम एक लाभार्थी को जोड़ें, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस योजना में जो रोजगार पाने वाले की मासिक अधिकतम जो सैलरी है वो 1 लाख तक रखी गई है, यानी हम देखें तो इस योजना के तहत रोजगार पाने वाला एक बड़ा मध्य वर्ग भी स्थापित होने जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? जिस तरह से इसमें जो सैलरी का प्रावधान रखा गया है कि जो ईपीएफओ रजिस्टर्ड कंपनी में 1 लाख रुपए तक की मासिक सैलरी या वेतन पाने वाला कोई भी व्यक्ति है उसको ये लाभ मिलने वाला है
1: कि 1 लाख तक की किसी को नौकरी मिल रही है, बहुत ही प्रतिष्ठित माना जाता है।
0: बिल्कुल।
1: दूसरी तरफ देखिए कि इस 1 लाख से जोड़ते हुए सरकार ने अभी कुछ दिन पहले ही बजट में 12 लाख रुपए तक के ये जो है सो टैक्स फ्री
0: किया था। बिल्कुल।
1: ये देखिए ये दोनों चीजें जोड़ती हैं कि 1 लाख रुपए वेतन पाने वाला एक युवा जिसकी कि समाज में एक प्रतिष्ठा होगी, लेकिन जिस तरीके से समाज बढ़ रहा है, जिस तरीके का आकांक्षी समाज है, उसमें 1 लाख रुपए में बहुत सारी चीजें उसे जुटानी होती है, तो उस पर सरकार की ओर से एक्स्ट्रा भार न पड़े तो उसको टैक्स फ्री किया गया। कंपनियों को ये राहत दी गई कि आपको हम मदद करते हैं इसमें, तो ये मुझे लगता है बहुत अच्छा स्ट्रक्चर हुआ है आज के।
0: बिल्कुल। जुड़े रहिए आशुतोष जी, एक लाभार्थी को हम शामिल करते हैं, अमन त्रिवेदी जो एक डेटा इंजीनियर हैं हमारे साथ जुड़े हैं। अमन जी स्वागत है आपका।
2: नमस्कार।
0: अमन जी अपना अनुभव बताएं, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आपको किस तरह से लाभ मिला है, और थोड़ा अपनी प्रोफाइल के बारे में भी बताएं, किस तरह से आप एक ईपीएफओ रजिस्टर्ड कंपनी में काम कर रहे हैं और कैसे आपको इस योजना का प्रोत्साहन मिला है?
2: अगर सबसे पहले बात करें कि मुझे लाभ कैसे मिला है, तो उसमें सबसे पहले बात करें तो कंपनीज जो हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, उनको सबसे पहले तो इंसेंटिवाइज करा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप फ्रेशर्स जो होते हैं जिनका पहली बार ईपीएफओ का अकाउंट खुला है उन्हें हायर करिए।
0: बिल्कुल।
2: तो मैं एक फ्रेशर हूं, मैं इंजीनियरिंग करा हूं, राइट, मैं और अभी मैं एज ए डेटा इंजीनियर जॉब कर रहा हूं। तो पहले क्या होता था कि इंटरव्यू से पहले ही आपसे पूछते थे एक्सपीरियंस है, नहीं है तो नहीं इंटरव्यू होगा, तो स्किल सेट पे बात ही नहीं आती थी। अब एज ए फ्रेशर भी मौका मिलेगा बहुत लाखों करोड़ों युवकों को कि एटलीस्ट इंटरव्यू तक जहां तक इंटरव्यू में जाए और बता पाए कि उनकी प्रतिष्ठा कितनी है और उनकी कैपेबिलिटीज के बारे में। और बात करें तो जैसे कि जो 15,000 रुपए की राशि जो इम्प्लॉयज को भी दी जा रही है, वो दो टाइप, या तो वो कुछ 6 महीने बाद जो 7,500 और उसके 6 महीने बाद वापस 7,500। मेरा मानना है कि वो कुछ के लिए रिवॉर्ड है और कुछ के लिए मोटिवेशन है, वो कि कॉरपोरेट में गए हैं जो एज एन एम्प्लॉई 6 महीने में, उसके बाद जो राशि आती है वो एक रिवॉर्ड लगता है कि ये मेरे लिए एक नया कदम था और इसके साथ एक रिवॉर्ड मिला है। तो और वर्कफोर्स में इसके बाद मैं जो हमारी यंग जनरेशन है वो ज्यादा दिख रही है और ज्यादा दिखेंगी, तो आई थिंक जॉब सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो भी ये योजना जो है ये बहुत मददगार साबित हुई है यंग जनरेशन के लिए, उस हिसाब से बहुत यंग एज के अंदर भी एक इस कॉर्पोरेट के अंदर घुसने में भी बहुत मदद की है इस योजना ने मेरी और लाखों युवाओं की।
0: आशुतोष जी आपको मैं फिर से जोड़ना चाहूंगा, और कि इस योजना के तहत नए लोगों को सामने लाने का मौका मिलेगा जो रोजगार की तलाश में है, और इसमें जैसे कंपनी और नियोक्ताओं के लिए भी ये शर्त है कि अगर

0: 50 कर्मचारियों से कम संख्या की कंपनी है तो उन्हें 2 नए लोगों को हायर करना होगा, और अगर 50 से ज्यादा बड़ी कंपनी है तो 5 नए लोगों को हायर करना होगा। यानी जो नियोक्ता हैं उन पर फोकस है कि वो नए लोगों को रोजगार दें। किस तरह से इस दिशा में ये एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है कि जो फ्रेशर्स हैं और जैसा कि अमन जी ने भी बात की, जो स्किलफुल लोग हैं वो सामने आए।
1: अब क्या है कि 2 इसके पहलू देखिए इस योजना के। 1 लाख रुपए तक के लिए ये है जो किसी यूथ को मिलता है, उसमें सरकार इस योजना में लेकर के आई है। दूसरी तरफ जो फर्स्ट टाइम ईपीएफओ में एनरोल हो रहे हैं, अब आज के दिन आप थोड़ी सी अगर पीछे थोड़ा पीछे घूम कर देख लें तो आप देखेंगे कि इतनी कितनी संख्या है ऐसे लोगों की जो कि बिल्कुल फ्रेशर आ रहा हो और उसे सीधे 80,000 90,000 1 लाख रुपये मिल रहा नहीं। ये यहाँ पर आप जो है सो एक माहौल ऐसा क्रिएट करते हैं कि कंपनियां जो हैं, और उसमें आपने ये बात भी कही कि 50 से कम है तो 2 और उससे ऊपर है तो कम से कम 5 की जो बात है वो एक लिमिट भी डाल करके, क्योंकि कंपनियां भी दोनों चीजों से चलती है, एनर्जी के साथ भी चलती है, अनुभव के साथ भी चलती है, तो वो अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन उस बीच में फ्रेशर्स के लिए जो नए युवा आ रहे हैं स्किल लेकर के, उनको कैसे एक मौका मिले उसके लिए माहौल बने।
0: बिल्कुल, तो यहाँ पर मैं नीलेश वर्मा जी को भी शामिल करना चाहूंगा जिन्होंने रोजगार को लेकर एक अपनी कंपनी में भी इस योजना के तहत रोजगार देने में मदद की है। नीलेश जी स्वागत है आपका, अपने बारे में बताएं, अपना परिचय दें पूरा, और साथ ही इस योजना को किस तरह से आपने इम्प्लीमेंट किया अपने लिए इसके बारे में भी बताएं।
2: धन्यवाद। मेरा नाम नीलेश वर्मा है। आई एम वन ऑफ द को फाउंडर ऑफ इंटेलीडीबी एंटरप्राइज। वी आर वन ऑफ द प्रीमियम स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन जो AI के तहत एंटरप्राइज डेटाबेस में काम कर रही है। हम लोगों की सबसे बड़ी परेशानी हायरिंग थी, और हायरिंग के साथ साथ लोगों को रिटेन करना था, बिकॉज हायरिंग वॉज वन पार्ट एंड रिटेंशन वॉज दी अनदर पार्ट। जितने भी न्यू ब्लड हैं आज की डेट में, नए लोग हैं जो कॉलेज पास आउट हैं, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्रेशर्स, द प्रॉब्लम विद दीज फ्रेशर्स वर देयर रिटेंशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज दे ऑलवेज लुक एट मनी ओवर द करियर, मोस्ट ऑफ देम, आई वुड नॉट से ऑल ऑफ देम, बट मोस्ट ऑफ देम दे लुक एट हॉपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लुकिंग एट देयर करियर मोर रादर देन स्टिकिंग टू वन ऑफ द एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अभी रिसेंटली जब से ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना लागू हुई है, इससे हमारे जैसे एम्प्लॉयर्स को काफी बेनिफिट मिला है इन टर्म्स ऑफ यू नो हायरिंग द राइट सेट ऑफ रिसोर्सेज एंड मेकिंग देम स्टिक टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बहुत ही फोकस्ड अप्रोच है, और इसको मैं यू नो आई एम ग्रेटफुल टू द ईपीएफओ एंड द पीएम ऑर्गेनाइजेशन फॉर रोलिंग दिस आउट। हालांकि इस योजना के बारे में आज भी बहुत लोगों को पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू नो आई बींग एन एम्प्लॉयर, आई गॉट टू नो अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन कपल ऑफ मंथ्स अगो, बट मैं इसके बारे में और डीप जानना चाहूंगा, अंडरस्टैंड करना चाहूंगा, एंड आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हाउ कैन वी लेवरेज इट टूवर्ड्स द यंग जनरेशन एम्प्लॉयमेंट।
0: बिल्कुल, तो आपको क्या उम्मीद है इस योजना से? जैसे आप जैसे जो एक तरह से मैं कहूं कि देश के विकास में भी आप जैसे जो एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे बिजनेसेस एंटरप्रेन्योर्स, तो कैसे इस योजना से आगे आने वाले समय में एक बहुत स्किलफुल वर्कफोर्स आपको मिलने वाली है, और जो इंसेंटिव्स मिल रहे हैं उससे भी कैसे अट्रैक्ट होंगे आजकल के जो यूथ हैं वो इस योजना के जरिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में टैलेंटेड पूल हमारे सामने आ पाए?
2: जी जी, सो मेरे लिए इनफैक्ट सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह योजना केवल एक फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है फॉर द एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर, यह एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटीज एंड मैकेनिज्म है, एंड इट एक्चुअली एनकरेजेस कंपनीज टू क्रिएट मोर जॉब, एंड इट एनकरेजेस यंग प्रोफेशनल टू एंटर इनटू द फॉर्मल वर्कफोर्स विद कॉन्फिडेंस। जब सरकार रोजगार देने वाले संस्थानों को समर्थन देती है तो उसका प्रभाव केवल कंपनी तक सीमित नहीं रहता है, इट एक्चुअली क्रिएट्स अ मल्टीप्लायर इफेक्ट अक्रॉस फैमिलीज, कम्युनिटीज एंड द ब्रॉडर इकोनॉमी। एवरी न्यू एम्प्लॉय सपोर्ट्स अ हाउसहोल्ड, एंड एवरी हाउसहोल्ड कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स द कंजम्पशन, एंड एवरी सक्सेसफुल बिजनेस कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स अ नेशन बिल्डिंग। तो बेसिकली जितने भी नए रोजगार को हम प्रोत्साहन देते हैं, अलग अलग योजनाओं को के तहत सरकार हमें यू नो इंसेंटिव देती है एज एन एम्प्लॉय एज एन एम्प्लॉयर, ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी की हमारी

0: कंट्री की कंट्रीब्यूशन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है।
1: बिल्कुल आशुतोष जी, आपसे अब मैं जुड़ना चाहूंगा। कुछ आंकड़े बड़े इम्पोर्टेंट हैं इस योजना से संबंधित, जैसे जो कुल रजिस्ट्रेशन इस योजना के तहत अब तक हुआ है कर्मचारियों का, जो नए कर्मचारी जुड़े हैं लगभग 60 लाख के करीब नए कर्मचारी इससे जुड़े हैं, और युवाओं की संख्या अगर हम देखें तो 71% के आसपास है इसमें। और साथ में एक और महत्वपूर्ण तथ्य इस योजना के तहत निकल आया है कि महिलाएं भी 30% के आसपास जुड़ी हैं, यानी वुमेन वर्कफोर्स भी इस योजना से बढ़ता हुआ देश भर में देखा जा रहा है। और कैसे आप देखते हैं जिस तरह से ये आंकड़े हैं कि इतनी कम समय में और इतना अच्छा उत्साह है रोजगार के सृजन में, और साथ ही जैसा कि मैंने युवाओं की और वुमेन वर्कफोर्स की तो बात की ही, क्या आपका कहना है?
2: दोनों चीजें हैं, एक तो इसकी जरूरत थी और दूसरी बात कि सरकार की ओर से मदद तो कंपनियां भी आगे बढ़ी, तो ये रजिस्ट्रेशन तो आपको दिखना ही था, ये जो जोश है वो तो दिखना ही था। जैसे अभी निवेश जी ने बात कही ना, इनके ऑर्गेनाइजेशन में 15 लोग हैं जो फ्रेशर हैं, बिल्कुल जो जाकर के इन्होंने कॉलेज से पिक किया, कैंपस से उठाया और लेकर के आ गए। अब यही इस योजना की जो खूबी है वो यही है।
1: बिल्कुल,
2: तो ये और जाहिर तौर पर ये फोकस ही किया गया है उस एज ग्रुप पे, जो बात अभी शुरुआत में अमन जी ने भी कही ना कि 21 से 30 के बीच में जो सबसे ज्यादा फोकस भी वही है, क्योंकि वही जरूरत है, वही आने वाले दिनों में बदलेंगे विभाग को।
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर, जैसा कि नाम में ही है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, तो विकसित भारत का एक रोडमैप ये योजना देती है, क्योंकि इसमें एक तरफ इंसेंटिव है नियोक्ताओं को और रोजगार पाने वालों को, दूसरी तरफ देश में एक स्किल्ड वर्कफोर्स को औपचारिक सेक्टर में लाने की इस योजना के तहत पूरी कवायद है, जिससे कि रोजगार बड़ी संख्या में बढ़े और एक पूरा स्किल सेट तैयार हो युवाओं का, जिससे कि देश के विकास में वो अपना योगदान दे सकें। बहुत धन्यवाद आप सभी का कार्यक्रम में जुड़े और इस योजना के जो फायदे हैं और आने वाले समय में जो एक बड़ा इसका आउटकम निकलकर सामने आएगा, इन सभी बातों पर आप सभी ने विस्तार से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे रोजगार के नए अवसरों को गति देती प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: Countrywide.